एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सेवा प्रारंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन। सुप्रभात।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान

0: ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मानव हृदय पग पग पर चुनौतियों का सामना करता है। विवेक सम्मत मार्ग पर चलता हुआ वह विभिन्न कर्मों की ओर प्रेरित होता है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। गीता का मूल सार ही यह है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म ही भक्ति है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है। यही धारणा उसे साहसी बनाती है और उत्साह से पूरित कर पूर्णता की ओर ले जाती है। कई बार वह कठिन परिस्थितियों से दुखी और भयभीत भी हो जाता है, किंतु मन के संकल्पों द्वारा वह अनासक्तियों से जूझता हुआ लोक कल्याण को अपना गंतव्य चुन लेता है। बड़े बड़े संत, ज्ञानी, विद्वान इसी संकल्प शक्ति द्वारा समस्त कष्टों का परिहार करते हुए दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना भी मत कर। सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्म कर, सिद्धि वैयक्तिक नहीं होती। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने एक जगह कहा है, हम हो समष्टि के लिए वेष्टि बलिदानी। सिद्धस्थ होना कुशलता तथा विशेषज्ञता का परिचायक है। साहस, धीरता, उत्कंठा के साथ आनंद की अनुभूति ही लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। सिद्धि त्याग मांगती है, कष्ट सहने की क्षमता मांगती है। भौतिक मान अपमान से किसी अन्याय, रूढ़ी या कार्य का विरोध जो मनुष्य करते हैं, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होते हैं। उच्चाशयता और गंभीरता ही किसी लक्ष्य को अंतिम सोपान तक ले जाती है। गांधी जी का मानना है, जीवन एक प्रेरणा है, इसका लक्ष्य पूर्णता के लिए प्रयासशील रहना है, जो आत्मोपलब्धि ही है। जीवन के उद्देश्य आत्मोपलब्धि की तब तक सिद्धि नहीं हो सकती जब तक सर्वोदय की सिद्धि नहीं बन जाती। जो मनुष्य नहीं जानता कि देशभक्ति या अपने देश के प्रति ममत्व क्या है, वह अपना कर्तव्य या धर्म भी नहीं जानता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था सिद्धस्थ। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम में आइए हम सब सुमिरन करें उस परमपिता परमेश्वर का जिसने समस्त सृष्टि की रचना की।

ये भक्ति रचना आपने सुनी सीमा मुंदारा साबू के स्वर में। अगली रचना आपको सुनवाते हैं सागर व्यास की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से चिंतन और वंदना FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी पासवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचित मानस गान।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य, जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के प्रातःकालीन और सायंकालीन सभाओं की, कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि प्रातः 6:45 पर वागड़ी कार्यक्रम खेतीनी बात, प्रातः 6:50 पर आदिवासी लोक संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे लक्ष्मीधार और साथियों की आवाज में लोक भजन। प्रातः 7:20 पर वातायन, वातायन में आज वार्ता, विषय रहेगा तनाव प्रबंधन, वार्ताकार डॉक्टर लोकेंद्र कलाल। प्रातः 7:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, रात 8 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे उद्घोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। आज का विषय है पत्र, राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर। राजस्थान लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 9 जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 9:10 पर सुगम संगीत और 9:30 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सजीव फोन इन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय है जैविक खेती नए आयाम। इस विषय पर चर्चा के लिए साथ होंगे राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल। दोपहर 12 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, तो अब एक नजर सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5:05 पर राजस्थानी लोक संगीत, 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोबारा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। शाम 6:30 का समय रोजाना की तरह जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर जयपुर केंद्र से ही राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे जयपुर केंद्र से किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर जयपुर केंद्र से ही प्रसारित कार्यक्रम होंगे। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 10 बजे फिल्म संगीत। रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है वागड़ी कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वाला सब किसान भाई ने बने धर्मिष्ठानु राम राम राम राम। देखो भाई ने बने सब खेती बाड़ी नु काम काज करवा लगे तो कहा किम के अवड़े जे भी खरीफ नी फसल नी बुआई वगैरह कर रखी थी लगभग घना भाई ने कटाई वगैरह थी गई घना करी रहे ने घना ने हजी वाई देर भी है कि मैं देखो फसल ने अनुसार समय भी जो है ने कटाई नो समय ने बुआई नो समय ने अनुसार अपने काम था तो बढ़िया रहे। जिम अपने मक्की वगैरह जेने पहले पेराई गई थी तेने कटाई वगैरह भी चालू थी गई है घना भाई इन सोयाबीन वगैरह पहले थी गयु तो एनु भी काम चालू थी गयु है घणु बाकी भी है ने कही कि भाई ये शाक सब्जी वाले काम है ये 12 महीने बत्रीगढ़ी चालवा वालू है तो कि रोप वगैरह लगाड़े है कोई खातर वगैरह ना कर कोई बीज ना कर मैं कोई न कोई तरह तक कई न कई काम काज कर रहे क्योंकि अवड़े तुअर वगैरह है क्योंकि ये भी फसलें घना भाई कर रखी है क्योंकि जिनमें सिंचाई की सुविधा थी खरी आ फसलें कर रखी है तो अपने ने खास कर ध्यान रखू कि जो भी अपने ने कटाई ना समय है वो कटाई अनुसार जो फसल थी गई हो तेने टेम टेम माते अपने ध्यान कर काम करव जरूरी है क्योंकि एनु भी जरा से भी लापरवाही थी गई तो अपने नुकसान थवानी बात थी सके अपने किसान भाई बहने तो हमेशा अपने आने बात ध्यान रखव जरूरी है क्योंकि अपने जी भी कटाई वगैरह थी थी तो या तो कोई फसल रुकी जाए तो भी नुकसान है लीलू रहेगा तो भी नुकसान है एटले अनुसार अपन ध्यान रखे ने खास जो भी मशीन वगैरह नो उपयोग औजार वगैरह नो उपयोग कर रहा तो ध्यान टूट फूट वगैरह है या काट है या जारी नट बोल्ट वगैरह जो आप ट्रेक्टर वगैरह हार्वेस्टर थी जी खेतर में काढ़वा काम करो जी मशीनरी से जेन उपयोग कर रहा कहो ते खास कर देखरेख कर ली टूट फूट में ध्यान रखे कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करे क्योंकि आप कहो कि भड़ाड़ी में कर दे कि ना भैया भाई ने आ थी गये मारी फसल कटाई थी गई है तो मुँह भी काढ़ पर आप पूरे दड़ा थकान ने गर्मी भी पड़ी रही थी कि बेरो तो मौसम थी गये हवा हाँ टाट लगे ने दाड़े दाड़े एकदम ताप थाय तो एने कारण भी अपन समस्या थी सके ने खास अपने कोई भी एक हाथ लग काढ़वा काम भी करूंगा तो अपने थकान ने कारण अपने कोई भी तरह नुकसान थी सकेगा एट्ले आ सब नानी बात है एनु भी ध्यान रखिए जो भी फल फसल अनाज वगैरह अपने कटाई वगैरह घरे लाई मेलव है तो ड्रम कोटी है थेला वगैरह ही तो एनु भी ध्यान रखे कि अपने कोई भी तरह साफ सुथरो हो जो कोई पहले पड़ी तो कोई टाट वगैरह नहीं तो एम कीट वगैरह लगवा संभावना थी सके तो जो नव अनाज वगैरह आए तो इनमें थे कट्टा ड्रम थी भी कोई अपने नुकसान नहीं था एनु भी ध्यान रखे पुराना अनाज धान वगैरह पड़ी तो एने भी अलग करती जी जगह मे अपने लाने अनाज वगैरह मेलव है तो ये जगह नु भी ध्यान रखे कि जमीन थी नेसे होवो नहीं जुए कि जमीन थी रहेगा तो सिलन वगैरह लगवा भी संभावना थी सके ने सिलन रहेगा तो थी सके नहीं भाई अपने अनाज वगैरह खराब थवानी संभावना थी सके तो अपने आज जी बातें ही डोर वगैरह रही जी लागी भाई आज दीवाल वगैरह में या पानी नी समस्या हो एवी जगह माते पड़ी तक हो तो सिलन थी जाए तो इन थी नुकसान थी सके एटले टेम टेम माते आना कार्यक्रम ने माध्यम थी कीस कहू है कि जे भी अपने काम करव ध्यान थी सावधानी थी करव जरूरी है क्योंकि अपने जरा से भी लापरवाही कर दूंगा तो अभी देखो फसल वगैरह लगभग अच्छी है कर कई जगह माते कम भी पाकी हुए कई वधार भी पाकी हुए क्योंकि हमने वक्त मेघ भगवान मर्जी वगैरह थी नहीं तो कई जगह की जरूरत थी अमे टेम टेम मैं पानी पड़ी भी गये कई जगह नहीं भी पड़ू तेने देखो आ खरीफ की फसल में तो कम वधारे वाली स्थिति थी सकता है पर अपने हर बात मन दुखी नहीं करव क्योंकि आ फसल अगली फसल भी आप तैयारी कर अपने काम कर सको बीजू कामकाज तो हमेशा करव है पर कामकाज में हाथ खावा पीवा रहवा साफ सफाई नु विशेष ध्यान रखूंगा तो बढ़िया रहेगा क्योंकि पहलू सुख है निरोगी काया ने बीजू सुख है घर की माया एटले हर बात ध्यान रखी कामकाज करूंगा तो बढ़िया रहेगा।

0: समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और

0: मस्टर्ड है।
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: ने हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझ भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीधर और साथियों की आवाज में आदिवासी लोक भजन आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप वार्ता सुनेंगे तनाव प्रबंधन, डॉक्टर लोकेंद्र कलाल।
1: तनाव प्रबंधन वर्तमान युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है। जीवन में भागा दौड़ी आम बात है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और संवेदनाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। जीवन की इस आपाधापी में कई तरह की समस्याएं आती हैं। व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का साहस से सामना करता है तो उबर जाता है और उबर कर निखर जाता है, किंतु यदि समस्या जस के तस बनी रहती है तो वह कुंठित होने लगता है और यही कुंठा धीरे धीरे तनाव के रूप में उभरते हैं। वैसे सामान्यतः तनाव कई बार लाभप्रद भी होता है। इससे व्यक्ति अपने कार्य सही समय पर संपादित कर देता है या लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, किंतु यदि तनाव उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना उसे रुग्ण कर देता है, वह बीमार हो जाता है। आज अधिकांश समस्याएं मनोशारीरिक स्वरूप लिए हुए हैं। आधुनिक युग में एकाकी प्रवृत्ति और जीवन के कारण तनाव की समस्या एक भयंकर समस्या बन गई है। तनाव के बढ़ते प्रकोप के कारण मनोविज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। चिकित्सा विज्ञान तनाव के प्रबंधन में रुचि दिखा रहा है। यद्यपि तनाव नितांत वैयक्तिक विषय है, कोई किसी समस्या का सामना किस तरह से करता है यह उस पर निर्भर है। तनाव का पूरी तरह मापन संभव नहीं है, फिर भी अब उसकी प्रकृति समझकर उचित समाधान के विकल्प खुले हुए हैं। तनाव अर्थ व प्रकृति। तनाव एक नकारात्मक अवधारणा कही जा सकती है। कठिन परिस्थितियों से उत्पन्न असामान्य स्थिति तनाव है। वस्तुतः तनाव एक सहज मानवीय प्रकृति है। यह जीवन में आए बदलाव, चुनौतियों और खतरनाक परिस्थितियों या खतरों से निपटने के लिए प्रेरित करता है। तनाव के कारण व्यक्ति की मनस्थिति असामान्य हो जाती है, अतः यह नकारात्मक सांवेगिक अनुभव है। तनाव में कुछ उद्दीपक कार्य करते हैं जिन्हें स्ट्रेसर्स कहते हैं। इन उद्दीपक में तनाव सहन करने की शक्ति छुपी होती है। कोई व्यक्ति किस स्थिति का सामना कैसे करेगा यह ये उद्दीपक तय करते हैं। तनाव दो प्रकार के होते हैं, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इसे सकारात्मक तनाव भी कहा जाता है। जब किसी प्रकार के तनाव से कार्य संपादित होता है या समयबद्ध करने से अच्छे परिणाम आते हैं तो इसे सकारात्मक तनाव कहते हैं। इससे अभिरुचि विकसित होती है, नए कार्य प्रारंभ होते हैं इत्यादि। डिस्ट्रेस इसे नकारात्मक तनाव कहते हैं। यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। इससे चिंता, सिरदर्द, अनिद्रा, असावधानी, चिड़चिड़ापन जैसे शारीरिक व मानसिक लक्षण अनुभूत होते हैं। यह लंबे समय तक रहता है तो इससे भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तनाव के लक्षण। मनुष्य में तनाव के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे तनाव का पता चलता है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक अवस्था से तनाव का पता चलता है।

ऐसे कुछ कारण निम्न हैं: शारीरिक लक्षण, सिर दर्द, पीठ व गर्दन दर्द, चक्कर आना, सीने में दर्द, हृदय धड़कन में तेजी, फ्लू इत्यादि। व्यावहारिक लक्षण, क्रोध आना, एकांत में रहना, आक्रामक होना, जिम्मेदारी से भागना, घबराहट, नाखून चबाना, बेमतलब इधर उधर घूमना, ज्यादा या कम सोना। संज्ञानात्मक लक्षण, याददाश्त की कमी, भटकना, नकारात्मक दृष्टि, चिंताजनक या तेजी से बढ़ते विचार इत्यादि। हम तनाव को यदि कम करना चाहे तो उसके भी कुछ उपाय हैं। हम चाहें तो तनाव को कम करने के लिए

0: हम चाहें तो तनाव को कम करने के लिए तनाव की पहचान करें कि हमारा यह तनाव क्यों उत्पन्न हुआ और उसकी पहचान करके उसके समाधान के लिए प्रयत्नरत रहे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अच्छा मधुर और गहरे अर्थ वाला कर्णप्रिय संगीत सुने, अच्छी हमारी कोई स्मृति हो तो उसे याद करें जो हमारी रुचि में, जैसे पुस्तकें पढ़ना, मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ना, घूमना खेलना इत्यादि कर सकते हैं। योग व्यायाम ध्यान मनोरंजन भी जीवन में बहुत आवश्यक है, तो मनोरंजन से भी जीवन में एक बदलाव आता है, तनाव कम होता है और हम सभी किसी न किसी अपने आप को कार्य में व्यस्त रखें। तनाव सहनशीलता, तनाव सहनशीलता से तात्पर्य है तनाव को पहचान कर उसे दूर करने के उपाय करना। तनाव की परिस्थितियों में उपरोक्त शारीरिक मानसिक व्यवहारिक एवं संज्ञानात्मक लक्षण स्पष्ट होते हैं। तनाव के समय ऐसी विरोधी भावनाओं को पहचान कर प्रबंधन करना जिससे तनाव के समय मानसिक शांति और सुकून मिले। कठिनाई या समस्या के समय तनाव मुक्त होकर शांति का अनुभव करना सहनशीलता है। तनाव सहन करने की शक्ति कठिनाई के समय संबलन प्रदान करती है। उच्च दबाव की परिस्थितियों में तनाव का सामना कर न सिर्फ तनाव से बाहर आ सकते हैं बल्कि कुछ नया भी कर सकते हैं, क्योंकि तनाव के दिन बीतने के बाद वातावरण पूर्ववत हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। यह निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो तनाव है वही दूसरे के लिए सामान्य परिस्थिति भी हो सकती है। कोई व्यक्ति तनाव आने के बाद लंबे समय तक पीड़ित रहता है तो कोई उससे तुरंत उबर जाता है। तनाव सहनशीलता में दूसरों के प्रति नकारात्मक, जैसे निराशाजनक, कटु या अमित्र हुए बिना दबाव या अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता है। तनाव सहन करने की क्षमता रखने वाले लोग उच्च दबाव वाली स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। वे प्रभावी ढंग से खुद की समस्याओं के समाधान की चुनौती का सामना करते हैं और अचानक आने वाली परेशानी को आसानी से पार कर लेते हैं। वे चिंता से शीघ्र मुक्त हो जाते हैं और उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। जीवन के उच्च लक्ष्य, विकास और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। हमारी कमियां, गुण, विचार, आदर्श, दोष, दृष्टिकोण, भावनाओं, ध्येय प्रेरणा इत्यादि की समझ उत्पन्न करते हुए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक और स्व। सार्वजनिक में लोग या समाज हमारे विषय में क्या सोचते हैं, धारणा रखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उस आधार पर आत्मनिरीक्षण करना। और स्व यानी सेल्फ, हम स्वयं अपने विषय में क्या सोचते हैं, धारणा रखते हैं, कहां सुधार करना आवश्यक है, इस आधार पर निरीक्षण करना। आत्ममूल्यांकन में अपने गुण दोष की पहचान होती है। आत्ममूल्यांकन उन पहलुओं का आकलन करने के लिए स्वयं को देखने की प्रक्रिया है जो किसी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन उद्देश्यों में से एक है जो आत्म सत्यापन और आत्मवृद्धि के साथ साथ आत्म मूल्यांकन को प्रेरित करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत वार्ता तनाव प्रबंधन। वार्ताकार थे डॉक्टर लोकेंद्र कलाल। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः की 7:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार।

0: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम ही रही प्यार के।

साहिर उद्यान जी के बोलते एस डी बर्मन की तर्ज प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आज है गुरुदत्त की याद का दिन और राज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर उन्हीं पर

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन्स हैं उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदी

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और

0: पुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
3: तो शुरू करें।

0: वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवम्बर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह यह दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान

0: योगदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
2: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जनसेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
3: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयाकल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए। प्रस्तुत है उत्कोषक का अपना कार्यक्रम कुछ दिल से।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कुछ दिल से में हम पत्र राष्ट्रीय डाक दिवस, जी हाँ, पत्र की बात करेंगे।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त आपकी आवाज प्रेरणा उपाध्याय और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। दोस्तों, बात करेंगे पत्र, क्योंकि आज 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस है। दोस्तों, कभी कभी खत के आने से चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी, कभी लिफाफे में बंद चंद शब्द पूरे दिन का सुकून बन जाते थे, और कभी किसी अपने की लिखावट को देखकर ही दिल का उठता था, लो आज फिर कोई अपना हमसे मिलने आया है। जी हां श्रोताओं, आज बात उस रिश्ते की, उस माध्यम की, जिसने दूरियों को पाटने का काम किया, जिसने बिछड़े हुए लोगों को भावनाओं के धागों में बांधा, और जिसने कागज के एक छोटे से टुकड़ों को यादों का अनमोल खजाना बना दिया। जी हां, आज बात होगी पत्रों की, चिट्ठियों की और उन खतों की, जिनमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि किसी का पूरा दिल धड़कता था। जी हां दोस्तों, वही एक जमाना था जब सुबह सुबह दरवाजे पर डाकिये की दस्तक होती थी। जी हां, साइकिल की घंटी बजती थी तो मन में एक सवाल उठता था कि आज किसका खत आया है।

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम कुछ दिल से में। दोस्तों बात कर रहे हैं आज पत्र की, डाक की। तो चलिए दोस्तों आज इस डाक दिवस पर हम फिर से उस दौर को जीते हैं, कुछ पल हम याद करते हैं उन पत्रों को, तन्हाइयों की महफिल में यादों की चाय मिलाकर पीते हैं और फिर एक कोरा कागज उठाकर अपने दिल के हाल लिखते हैं और कहते हैं कि बस इंतजार करना, ये डाक आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो जमाना गुजर गया जब किसी माँ को बेटी की चिट्ठी का इंतजार रहता था, किसी पिता को दूर पड़ रहे बच्चों की खबर चाहिए थी, किसी बहन को भाई की राखी के साथ उसका संदेश पढ़ना था और किसी प्रेमी को बस इतना जानना था कि दूर बैठा उसका अपना उसे याद करता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों अब आज अब तो बस स्क्रीन चमकते हुए कुछ बेजान से अल्फाज, न वो साई की महक बची, न उंगलियों का वो अनोखा साज जो तसल्ली उस वक्त के एक एक लफ्ज को चूम कर मिलती थी, वो आज इन तैरते हुए इमोजी के बाजार में कहां मिलती है। लेकिन फिर भी कागज पर जब दिल की बात उतरती थी, हर साई की एक बूंद एक कहानी कहती थी, लफ्ज भले ही थोड़े हो किसी कागज पर मगर हर पंक्ति किसी अपने की निशानी रखती थी। दोस्तों जब उस कागज पर उस लेटर पैड पर हम लिखना शुरू करते थे तो हमारी जो दिल की भावनाएं थी अपने आप उतर जाती थी, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका कह रहे हो, फूल तुम्हें भेजा है खत में।

जी हाँ दोस्तों, बस एक बात पूछती हूँ आज इस रेडियो के माध्यम से कि क्या आपने कभी कोई खत भेजा हो और उसके साथ कोई फूल भेजा हो? याद कीजिए वो जमाना, वो दौर। बस कुछ देर आप यादों में खो जाइए और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं जल्द।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अश्योर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्रय पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के आपके कार्यक्रम कुछ दिल से में। दोस्तों, बात है पत्र की, डाक की, क्योंकि आज राष्ट्रीय डाक दिवस है। दोस्तों, पत्र केवल समाचार पहुंचाने का साधन नहीं थे, वे हमारी संस्कृति का हिस्सा थे। किसी खत में घर की चिंता होती थी तो किसी में त्योहार की खुशियां, और कहीं माँ की हिदायतें होती थी तो कहीं पिता का आशीर्वाद, और प्रेम पत्रों की तो बात ही निराली थी। कितनी बार लोग एक पत्र लिखते, फिर उससे पढ़ते, कुछ शब्द काटते, कुछ नए शब्द जोड़ते, और फिर सोचते कि क्या अपने दिल की बात पूरी कह पाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही होता था, क्योंकि दिल की बात कहने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते थे। और आज राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर हम भारतीय डाक सेवा के उन तमाम कर्मचारियों को नमन करते हैं जो दूर दराज के गांवों से लेकर शहरों तक लोगों के संदेश और जरूरी डाक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाते थे। दोस्तों, आज अल्फाज सिमट गए हैं, अब मोबाइल के इस बेजान कोनों में वो मजा कहां जो उंगलियों की टाइपिंग करते हुए रोना धोने में, जो सुकून।

वो महफूज से पुरानी संदूक में रखे उन खतों के भीतर, वो खुशबू में, वो जादू का जमाना ढूंढ नहीं पाएगा उन खिलौनों को। जी हाँ, जब हम संदूक खोलते हैं, हमारे पुराने जो पत्र है उन्हें निकालते हैं, एक अलग ही खुशबू आती है। वो खुशबू लेकर हम उसी जमाने में, उसी दौर में पहुंच जाते हैं और जो चिट्ठियां आती थी, जो संदेश आते थे, उसी में गुम हो जाते हैं। तो इन्हीं यादों भरे सफर को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे गीत के साथ जिसमें चिट्ठी सिर्फ खबर नहीं, प्रेम का पैगाम, हमारे शहीदों की शहादत का पैगाम, हमारे भाइयों की राखियों का पैगाम, सबको लिए हुए ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत उन सभी के नाम जो अपनों से दूर रहकर भी हर दिन अपने घर को अपने दिल में बसाए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ भावुक हो गए थे इस गीत को, लेकिन अब चलते हैं वापस। अब जरा बात करते हैं उन खतों की जिनमें शिकायत भी होती थी, इंतजार भी, और प्रेम का वह मासूम सा इजहार भी, जिसे आमने सामने कर पाना कभी आसान नहीं होता था। एक खत लिखने वाला कितनी बार सोचता था, क्या लिखूं, कहां से शुरू करूं, कहीं मेरे शब्द मेरे दिल का राज तो नहीं खोल देंगे। कितने ढेर सारे सवाल होते थे उस लिखने वाले के हाथों की कलम जब लिखने बैठते थे, और फिर लिख देते थे, तुम मैं लिखने बैठू तो शाम ढल जाती है, तुम मैं लिखने बैठू तो शाम ढल जाती है, दिल की हर बात कागज पर कहां आ पाती है। कुछ लफ्ज लिखे हैं, कुछ एहसास बाकी है, तुम तक पहुंचने को अभी कई जज्बात बाकी है। जी हाँ, सचमुच प्रेम पत्रों की दुनिया बड़ी निराली थी। कभी खत में गुलाब की पंखुड़ियां रखी जाती थी, तो कभी किसी किताब के पन्ने पर लिखे दो शब्द ही संदेश बन जाते थे। किसी को जवाब मिलने की खुशी होती थी, तो किसी को जवाब न मिलने की बेचैनी। श्रोताओं, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन इन सभी भावनाओं में एक बात समान थी, समय निकालकर किसी के लिए कुछ लिखना। जी हाँ दोस्तों, अभी तो जहां बैठे हैं स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई और संदेश भेज दिया, लेकिन वो जो डाक का पत्र का जमाना था, उसमें समय निकालना और समय के साथ साथ ऐसे पत्र लिखना जो प्रेम पत्र है, उसके लिए अलग से जगह ढूंढना, वो नीम के पेड़ की छांव या किसी बंद कमरे में।

बैठना और लिखना। आज भी हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं हर बात मोबाइल पर ही कही जाए। कभी अपने माता पिता के लिए, किसी पुराने मित्र के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमारी जिंदगी में अच्छा योगदान दिया हो, एक छोटा सा पत्र लिख दीजिए। जी हाँ श्रोताओं, लेकिन जो पत्र लिखे हुए थे उनको आज याद करते हैं इस गीत के माध्यम से। हम चलते हैं उसी प्रेम में, उसी इंतजार में।

तो दोस्तों, आज के कुछ दिन से मैं हमने याद किया उन चिट्ठियों को जो कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर आई, कभी किसी की आंखों में नमी बनकर ठहरी और कभी दूर बैठे अपनों को घर के और करीब ले आई। वक्त बदला है, संदेश पहुंचाने के तरीके बदले हैं, लेकिन दिल की भावनाएं आज भी वही हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ खत पुराने होकर भी पुराने नहीं होते, कुछ शब्द मिटकर भी दिल से जुदा नहीं होते। रिश्तों को जिंदा रखिए अपनेपन के साथ, क्योंकि सच्चे एहसास कभी कागज के मोहताज नहीं होते। राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर डाक सेवा से जुड़े हुए सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और उसी उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह अपनों की याद, मधुर संगीत और नई ऊर्जा से भरा हुआ रहे। तो इसी के साथ आपकी दोस्त, आपकी आवाज प्रेरणा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम कुछ दिल से, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं सीमा मिश्रा और निर्मल मिश्रा की आवाज में राजस्थानी लोकगीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
2: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: एसआरटी ऐप।
1: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और एमडीटी से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो,
4: हाँ हाँ,
3: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा की आवाज में राजस्थानी लोक संगीत। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत आयोजित एयर शो में शामिल होंगे। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज, आपसी राजीनामे से मामलों का निस्तारण होगा और पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश भर में आज पंचायत समिति स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाएं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण

0: और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। वे कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के आसपास रहने वाले परिवारों को विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खिलौने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल ही नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा।
1: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के जवानों और विभिन्न देशों से आए वायुसेना के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तरंग शक्ति अभ्यास 26 सितंबर से शुरू हुआ था जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य सैनिकों के बीच आपसी सहयोग, संयुक्त रूप से अभियान चलाने की क्षमता और एक दूसरे की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझना है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास में F-35 लाइटनिंग 2, राफेल, F-16, A-400M और KC-30A सहित कई उन्नत विमान भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। उन्होंने कहा कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
0: राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य माह का आज समापन होगा। 10 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में रैलियों तथा जागरूकता सत्रों के जरिए लोगों को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग किया गया। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश ने बताया कि अभियान का समापन डिजिटल शपथ के साथ होगा। उन्होंने अत्यधिक तनाव और अवसाद की स्थिति में चिकित्सक परामर्श लेने की जरूरत पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालतें आज लगाई जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता वाद निवारण आयोगों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 8,038 से अधिक प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल लोक अदालत के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं जयपुर सहित प्रदेश के अन्य न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर दर्ज जन शिकायतों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासन

0: सचिवालय में हेल्पलाइन का निरीक्षण कर परिवादियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नेक्स्ट जेनरेशन राजस्थान संपर्क और एआई आधारित संपर्क जीपीटी की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों का विश्लेषण कर आमजन को राहत पहुंचाने को कहा। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कल दूसरे दिन कुल 42 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें जिला परिषद सदस्यों के लिए 8 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 34 नामांकन पत्र शामिल हैं। जिला परिषद सदस्यों के लिए 15 उम्मीदवारों ने अब तक 16 नामांकन पत्र भरे हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्यों के लिए अब तक 41 नामांकन पत्र भरे गए हैं। दूसरे दिन झालावाड़ की डग पंचायत समिति में सबसे अधिक 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए। प्रत्याशी 13 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी संभावित प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया और चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। बीसलपुर परियोजना के कमांड क्षेत्र में प्रेशर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना एमकैड के तहत शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने बताया कि पाइपलाइन प्रणाली से खेतों तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाना और किसानों को बेहतर जल प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
1: भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है जिसमें ये कहा गया है कि जो नहरों से सिंचाई होती है, जो पानी फ्लो से दिया जाता है, उसको फुव्वारा पद्धति पर प्रेशर इरिगेशन पर कन्वर्ट किया जाए। इसका एक प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है जिसमें 5000 हेक्टेयर एक क्षेत्र में हम जो प्रवाह प्रणाली थी, जो ग्रेविटी फ्लो था, उस नहरी तंत्र को हम कन्वर्ट करेंगे फव्वारा पद्धति में। इससे पानी की बचत होगी और किसान ये देख सकेगा कि किस प्रकार ये उन्नत किस्म की जो सिंचाई प्रणाली है, इससे अच्छी फसल पैदावार होती है और पानी नष्ट नहीं होता है। इससे पेयजल के लिए जो उपलब्धता है पानी की, वो भी बढ़ेगी और सिंचाई भी अच्छी तरह से कर सकेंगे।
0: जयपुर में 13 अक्टूबर से जनजातीय हस्तशिल्प और उत्पादों का आदि बाजार लगाया जाएगा। सिविल लाइन्स क्षेत्र में 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस बाजार में जनजातीय कारीगरों के पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना और उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर में बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के तहत आयोजित एयर शो में शामिल होंगे। प्रदेश में इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज, आपसी राजीनामे से मामलों का निस्तारण होगा। और पंचायती राज चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। प्रदेश भर में आज पंचायत समिति स्तर पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशालाएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज में गाई हुई कुछ चुनिंदा गजलें।

0: तो भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और घर में कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो,
2: हाँ हाँ,
1: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत। आशा भोसले की आवाज में कुछ चुनिंदा गजलें। प्रातः के 9:30 हो रहे हैं। अब सुनेंगे आप हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत? मुझे शिकायत है समाज को उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैर तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पर तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी।

0: है तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे

वे हीरो होंगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता राय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता राय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थी और 1953 में गुरुदत्त और गीता राय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ के रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, न ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और न ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग के खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूं वो बड़ी आर्कलाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता राय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: अपने दो रुपये अपने का भी दिया।

0: देखता क्या है, चल
1: उठा उठा जल्दी कर, पकड़ मत कोट,
0: गोड़ा दरवाजा और सीधा निकल जा बाहर, चल जा।
1: फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
0: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
0: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त झीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटे।
0: जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहाँ से।
3: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने।

0: बंद हो।
1: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
2: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है, उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी, मतलब और बढ़िया।

0: भक्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मारे, तेल मारे,

0: सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन, इस चमटी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बेटा सुन, इस चमटी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए चाहे घबरा।
1: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहां आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहां पहुंच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुंचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतरी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
2: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गए।

0: ठुकरा रहा था मुझको।
1: तो ये शायर भी है?
2: शायर? अरे तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नगमे उसके सर के पीछे पड़ी।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गए गया।
3: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।
4: यहां उसने

गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

आज के फनकार।

0: नाचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
0: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी।

लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था,

दी, ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया। गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूँ।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही है बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो

वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानुसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप। क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानुसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना। इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मॉरीशस घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मॉरीशस घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों नहीं पोड़ रही थी तू हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रहे।

जाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मन रसप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं? लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी, मानशेष घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी। जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निस्संग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैरा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओह, अरे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अरे तेरा लिखा

अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने। तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी से दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? आखिर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर आंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी। लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी है? वहाँ न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना? मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के

बिना। वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था। गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराये शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो वहां पोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई, खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थी। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदे चिपक गई थी। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सुबह के 11 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से सजीव फोन इन कार्यक्रम, जैविक खेती नए आयाम विषय पर बातचीत होगी श्री नरेश कुमार गोयल, कृषि आयुक्त राजस्थान।

0: नमस्कार 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से मैं हूं जितेंद्र वर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष कार्यक्रम में आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि आयुक्त राजस्थान नरेश कुमार गोयल साहब आईएएस और आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं जैविक खेती नए आयाम विषय पर। तो सबसे पहले तो नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: जी जी जी।
1: सब श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत।
0: जी नरेश जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे जो हमारा आज का विषय है, एक बहुत ही ज्वलंत विषय।

0: एग्रीकल्चर की बात करें तो जैविक खेती, तो ये जैविक खेती नए आयाम विषय पर हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैविक खेती है क्या।
1: प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैविक खेती, एक्चुअली मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मिट्टी क्या है, उसकी उर्वरा शक्ति क्या है।
0: जी,
1: एक्चुअली मिट्टी एकमात्र मिट्टी के कण नहीं होके पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, इको सिस्टम है
0: जी।
1: उसमें आप देखेंगे कि एक चम्मच मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं
0: जी।
1: प्राकृतिक खेती, जैविक खाद खेती इन सूक्ष्म जीवों के साथ प्राकृतिक संतुलन करते हुए, उनको नेचुरली ढंग से बढ़ाते हुए
0: जी, जी।
1: उनके तारतम्य के साथ एक प्राकृतिक ढंग से खेती करना है
0: जी।
1: एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है कि जैविक खेती का मतलब लोग छोटा सा ले लेते हैं, सब गोबर डालना जैविक खेती होगी। नहीं, ये नहीं। जैविक खेती बहुत विस्तृत विषय है
0: जी।
1: जिसमें हम कहें कि हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, भेंचा का हम मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए करते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी,
1: वहीं इसमें भी फर्टिलाइजर है, इसमें भी पेस्टिसाइड है, लेकिन वो जैव है, जैव उर्वरक है, जैव कीट नियंत्रण है, नीम आधारित उपयोग उसमें रहते हैं। इसमें मल्चिंग और जो अवशेष रेजिड्यू होता है फसल के करने के बाद जो बचता है उसका प्रबंधन है, मिट्टी की जांच करते हैं, पोषक तत्व है। ये एक परंपरागत लेकिन आधुनिक खेती है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें हम बात करें तो इस जीवामृत है, बीजामृत है
0: जी।
1: इसमें क्या करते हैं कि गुड़ बेसन से एक घोल तैयार करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ये कोई टोटका तो नहीं, गुड़ डाल ले और बेसन डाल ले। फिर जब मैं और ज्यादा मैंने विस्तृत जानकारी ली तो पता चला कि ये जो घोल तैयार करते हैं गुड़ और बेसन का और कुछ और तत्वों का, तो उससे जो सूक्ष्म करोड़ों जीव हैं उन जीवों को वो सक्रिय करता है, और वो जीव इस गुड़ और बेसन को खाके उनका एक साथ बहुत बड़ी संख्या में विस्तार होता है, और वही खेती को समृद्ध बनाते हैं, उन्नत करते हैं, है ना। और इसमें पंचगव्य भी है, जैसे हमारे पंचगव्य आप जानते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, इसको पंच घी का एक ट्राइकोडर्मा है जो कि फंगस से बनता है, और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग करता है, वो जैविक खेती में काम आता है। फसल चक्र है इसमें
0: जी, जी।
1: इसके अंदर जो मिश्रित फसल का भी रहते हैं, हम मृदा प्रबंधन भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो मूलतः जैविक खेती बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इसको एक खाली गोबर डालने तक सीमित नहीं करें। आगे की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किन किन में क्या क्या लोगों ने फायदा लिया और क्या क्या इनका किस तरह से उन्होंने खेती की
0: जी। नरेश जी, अब क्योंकि हम जैविक खेती की अब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम भारत देश की बात करें, एक समय था जब हरित क्रांति आई थी और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग शुरू हुआ था अपनी फसल को बढ़ाने के लिए या उसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आकर के जो रासायनिक हमारी खेती हो रही थी उससे जमीन को, भूमि को, मृदा को बहुत नुकसान हुआ, और इसी वजह से हमें फिर से जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ने का मतलब कोशिश करना पड़ रहा है। तो क्या ये इसकी आवश्यकता वास्तविकता में, क्या रासायनिक खेती से हुए नुकसान की वजह से जैविक खेती की आवश्यकता अधिक है, या जैविक खेती से कुछ और भी लाभ मिल सकते हैं?
1: आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है वर्मा साहब। इसमें एक्चुअली मिट्टी के लिए अधिक जो फसल उत्पादन के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, सल्फर चाहिए, तो उस वक्त देश एकदम इस चीज के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो रासायनिक उर्वरक है, टीएपी, यूरिया, एनपीके, उनका इस्तेमाल किया। उसका नुकसान ये हुआ कि धरती की उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। आप और जो सूक्ष्म जीव जिनके माध्यम से हम खेती का एक जो सही रूप वो देख रहे थे प्राकृतिक, वो खत्म हो रहा है। देखिए, शुद्ध आहार का और अमृत आहार से ही परिवार स्वस्थ रहता है। अगर अब आप एक चीज देखें कि आजकल आपको बड़ा, मैं बताते हुए दुख हो रहा है कि एक ओर तो हम धरती को माता कहते हैं और दूसरी ओर उसके सीने पे इतनी बड़ी संख्या में पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी इतना सारा डाल रहे हैं, तो उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है।

0: उसके कारण ये हुआ कि भूमि बंजर होती जा रही है। आप देखिए गली मोहल्ले में कैंसर के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड यूरिया है उनको कैंसर के मरीजों को इतना बड़ी संख्या में वो बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण हमारी धरती बंजर होती जा रही है। तो ये एक समय की आवश्यकता होगी कि हम वापस से ये इस पे विचार करें। यूरिया और इनका युग जरूरी है, लेकिन संतुलित प्रयोग जरूरी है
1: जी।
0: और इसके साथ क्या हमारी जो परंपरागत भारतीय कृषि जो है उसमें बहुत सारी तकनीकें मौजूद है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हनुमानगढ़ कस्बे में गुलाबी सुंडी का कपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रकोप हुआ
1: जी।
0: अब हमने वहां पे श्रीराम संताय संस्थान है कोटा, उनके माध्यम से योग से 150 खेतों में 150 किसानों के साथ प्रयोग किया परंपरागत हमारा नीमास्त्र का
1: जी।
0: तो मुझे एक किसान, मैंने आज उनको बोला भी आप सुनिएगा और जुड़िएगा भी हमारे प्रोग्राम से, एक झाजरे जी है उनका आया फोन के साथ, हर साल में 12 से 15 वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़काव करता था बार एक एक फसल के लिए और फिर भी फसल नहीं बचती थी। अब की बार उन्होंने हमारे जो नीमास्त्र और ये जो हमारे संस्थान है उसके माध्यम से प्रयास किया तो कह रहे सब 7 से 8 क्विंटल प्रति बीघा हमारा उत्पादन हो रहा है और भाव भी बहुत अच्छा है। सब इस बार हम निहाल हो गए और सुंडी बिल्कुल भी प्रयोग उस पर नहीं हुआ। तो ये जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ अगर हमारी धरती जहां से पौधे आके आ रहे हैं वो अगर हम पे आएंगे अंदर ले जाएंगे तो उसका क्या दुरुपयोग अंदर होगा आप सोच नहीं सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताता हूँ कि पेस्टिसाइड किस तरह के से नुकसान है। आपको भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी ध्यान होगा
1: जी, जी,
0: वो क्या थी, वो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी
1: जी,
0: और उसकी गैस थोड़ी सी लीक हुई और धीरे धीरे पूरा जो टर्बाइन है उससे निकला। तो आप देखिए हजारों लोगों की इस गैस से मृत्यु हुई। वही पेस्टिसाइड हम खेतों में हमारे यूज होता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी के माध्यम से पानी में जमीन में जा रहा है, फसलों में आ रहा है और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं
1: जी, जी।
0: तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी महामारी आने वाली है रासायनिक खेती से, कैंसर जैसे हर गली मोहल्ले में कैंसर के मरीज हो रहे हैं। तो हमें इस पे पुनर्विचार करना है, हमें सोचना है
1: जी। नरेश जी, हम आपसे जैविक खेती के बारे में बातचीत तो करते ही रहेंगे, हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि वो भी अगर जैविक खेती से जुड़े हुए उनके कोई सवाल हैं, कोई उनके मन में शंकाएं हैं तो वो हमसे बातचीत कर सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में फोन लगा के। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर है 2200600 और जयपुर के बाहर से अगर कोई श्रोता हमें फोन कर रहे हैं तो वो जयपुर का सिटी कोड 0141 जरूर लगाएं और आप सीधे संवाद कर सकते हैं जैविक खेती के बारे में या जैविक खेती से जुड़ी हुई कोई भी राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। नरेश कुमार गोयल आईएएस कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार आज हमारे साथ में उपस्थित हैं और सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रासायनिक खेती से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, मानव शरीर में भी पहुंच रही हैं कहीं ना कहीं, वो पेस्टिसाइड्स या जो हम और फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं रासायनिक, वो कहीं ना कहीं उसका कोई एक अंश हमारे शरीर में पहुंच रहा है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। और कई जगह हमने ये भी देखा है कि ट्रेन ऐसी चल रही है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम
0: से, यह बीकानेर जो आती है इधर जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा जो धान का कटोरा कहा जाता है हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर और पंजाब उधर से, तो धरती का जो ऊपरी सतह इतनी हार्ड हो गई है उसमें पानी नीचे नहीं जा रहा, उसमें आने वाले मतलब ये 10-15 सालों में हम बिल्कुल हमारी जमीनों को बंजर कर डालेंगे अगर हमने इसी गति से हम बढ़ते रहे तो
1: जी। नरेश जी, अभी जैसा कि हमने जैसे ही अपने श्रोताओं को कहा कि वो हमें फोन कर सकते हैं, एक श्रोता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ जी सर, नमस्ते सर।
1: हाँ नमस्कार, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं।
2: सर मुकुंद नागर बोल रहा हूँ मैं, झालावाड़ से बात
1: जी,
2: कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार मुकुंद जी।
2: जी सर नमस्ते सर,
0: नरेश बोल रहा हूँ, कमिश्नर एग्रीकल्चर
1: जी।
2: जी सर
1: पूछिए सर, सवाल पूछिए
2: सर। मेरा सवाल है सर, चूंकि जैविक खेती में हमें कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि हम स्प्रे तो करते हैं जैसे नीमास्त्र हो गया या हमारा कोई भी जो हम जैविक कीटनाशक बनाते हैं उससे तो करते हैं, पर उसका असर उतना नहीं होता जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, उतना रिजल्ट नहीं मिलता बजाय रासायनिक के।
0: देखिए ये आप हमारे जो हमने है ना अभी एक प्राकृतिक

0: ग्राम सिंचाई संस्थान कोटा में प्राकृतिक हमारे खेती के लिए हमने एमओयू किया है, जो आप उनका विधि में एक की बजाय दो करें, कई बार फसल आधारित होता है, एरिया आधारित भी होता है, तो मौसम आधारित भी होता है, तो थोड़ा सा आप हमारी, हमने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की हुई है, उस पर आप संपर्क करें ग्राम सिंचाई संस्थान में एक बार कोटा, चूंकि आप बहुत झालावाड़ नजदीक है, आप गए हैं क्या वहाँ पे?
1: जी सर, मैं एक बार जाके आया हूँ।
0: हाँ, तो वहाँ
1: जो तकनीकी बताई थी, हाँ, 10 पर्णी जो बताया था,
0: हाँ,
1: 10 पर्णी का भी मैंने उपयोग किया सर, सोयाबीन
0: हाँ,
1: की फसल में अभी इसी साल, पर सर वो परिणाम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था।
0: देखिए, आपको एक बार ये लगता है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव है जो मित्र कीट है, उनके कारण हमें लगता है कि ये, लेकिन अल्टीमेटली आपका, देखिए एक बार इतने सालों से हम फर्टिलाइजर पे जा रहे हैं, अचानक हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा असर आता है, लेकिन पहले साल बराबर रहेगा, दूसरे तीसरे साल हमारा जो अनुभव है, हमने उनसे जो, हम जो भी काम कर रहे हैं पूरा वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं, खेतों में हम पूरा उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके जो एटीसी में प्रयोग है वो कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि से करके, फिर उसके बाद करते हैं, तो आप डिटेल हमें वो दीजिएगा, हम उस पर चर्चा करके आपको संपर्क करेंगे।
2: जी, लगता है कि आप जो हमें श्रोता ने कॉल किया था, जो फोन किया था, उनकी शंका का समाधान हुआ होगा और निश्चय ही आपने जहां बताया वहां पर संपर्क करके वो अपनी शंकाओं का और समाधान ले सकते हैं। नरेश जी, हमारे साथ में एक श्रोता और जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ सर, हम योगेश जांगरे बोल रहे हैं, बेगूसराय छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ जी श्री जांगरे सर, खूब आपने छत्तीसगढ़ से संपर्क किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया,
3: जी
0: पॉपुलरिटी पूरे देश में है।
2: जी बताएं जांगरे साहब।
3: जी सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे जैविक खेती हम आज भी करते हैं, तो क्या वो उत्पादन में हमको थोड़ा सा प्रभावित नहीं करेगा? जो आजकल खेती कर रहे हैं लोग, रासायनिक खादों का छिड़काव करते हैं बहुतायत रूप से।
2: जी जांगरे साहब, आपके सवाल का जवाब आप अपने रेडियो सेट पे सुनिए।
3: जी जी, धन्यवाद
0: जी। हाँ जांगरे साहब, मैं फिर से करूंगा आग्रह कि अगर हम पूरा शुरू से देखिए, इसके कई स्टेप हैं। पहला स्टेप तो ये होगा कि क्या आपने अपना मिट्टी का सैंपलिंग और टेस्ट कराया कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीज की आवश्यकता है पोषक तत्वों की, फिर क्या आपने हरी खाद वर्मी कंपोस्ट भेजा हमने उसमें तैयार किया है क्या, फसल चक्र सही है क्या, ये शंका है। पर हमारे जो अनुभव आए हैं, जो हमारे रिसर्चेज हमने की हैं, शुरू में पहले साल चूंकि आप एकदम ऑर्गेनिक से, उससे फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक में आते हैं, तो थोड़ा संभावना है कि पड़े, लेकिन वो बराबर इतना बहुत ज्यादा कमी वाला नहीं है। अगर आप पूरा सिस्टमेटिक चलते हैं, हमारी जो रिसर्चेज आई है, जो हमने पेपर पब्लिश किए हैं, जो हमारे एसओपी बनी है, ट्रायल्स हुई है, उसमें ये आया है कि दूसरे तीसरे साल से इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और दूसरा आप उससे भी जोड़िएगा कि मान लीजिए आपका 10% उत्पादन कम हुआ है, तो लेकिन आपके प्राइस में 25 से 30% की वृद्धि हुई है, और साथ में आप उसको भी जोड़िए कि जो आप स्वास्थ्य अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कमा रहे हैं, उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। तो आप मल्टीपल एंगल से इसको देखिए, हो सकता है एक या दो साल में कुछ असर आए, लेकिन आगे ये बहुत अच्छा सिस्टमेटिक चलेगा। आप सारी चीजें करिए, इसमें मल्टीपल है, जैसे जैव उर्वरक भी है, जैव कीट नियंत्रण है, वर्मी कंपोस्ट है, और जो मैं बता रहा हूं नीम आधारित उपाय है, जहां आप तुलसी का, आपका देखे कि जहां तुलसी के पौधे लगे, मल्टीपल, मैं शुरू में मैंने जैसे आग्रह किया कि जैविक खाती खाली एक जो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र ये करने का नहीं, कंप्लीट पैकेज है और हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं। आप इस तरह से तैयार करिए, और कभी समय मिले तो राजस्थान में हमने काफी इसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है, क्लस्टर्स बनाए हैं, उस पे आप आके देखें तो आपको बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा आपके।
2: जी नरेश जी, बातचीत हमारी जैविक खेती पर चलती रहेगी, लेकिन चूंकि इस समय श्रोता हमें सुन भी रहे हैं और ये प्रोग्राम है एफएम 101.2 FM पर, तो हम एक सॉन्ग के लिए रुकते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर से आपसे बातचीत करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमेर चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल आईएएस, और आज हम बात करें जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है और इसके नए आयाम क्या हैं। नरेश जी, हमारी बात चल रही थी, श्रोता ने भी हमसे पूछा था कि अगर हम जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यील्ड थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है, कहां तक ये बात सही है और कहां तक ये मिथ साबित होती है?
1: देखिए, मैंने जैसे आग्रह किया कि जैविक खेती एक पूरा पैकेज है
0: जी,
1: है ना। आप कहोगे सर मैंने गोबर डाला और मेरे तो वो नहीं हुआ, इट्स नॉट दैट। मैंने कहा कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको मिट्टी उस तरह से तैयार करनी होगी कि हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और ढेंचा बीज राज्य सरकार निःशुल्क वितरण किए हैं वो करें, फिर जैव उर्वरक और वो सारी चीजें, बहुत सारे मल्टीपल है, कुछ जगह पे आई है कि शायद कम हुआ है, बट हमारी जो रिसर्चेज है जो हमने किया है, पहले साल इवन और दूसरे तीसरे साल में हमारा उत्पादन बढ़ा है इसमें। अलग कंडीशन वही है कि आप पूरा प्रशिक्षण लें, पूरी जानकारी लें, खाली व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चले, हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में आए, उनसे सीखें, हमारे जो प्रैक्टिस ऑफ जो पैकेज है उसको देखें, हमारी जो एसओपी है उसके अकॉर्डिंग चले, उसमें आपको निश्चय ही, मैंने एक हनुमानगढ़ का भी बताया है ना, आप कोशिश करो, अगर वो हमारे किसान उधर के कोई हनुमानगढ़ के जिन्होंने 150 किया उनमें से अगर कोई सुन रहे हो तो बताएं लोगों को क्या आपने किया, वो तो उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, किसान कह रहे हैं सब 10-12, 10-11 हजार का रेट है और 8 क्विंटल हो रहा है, हम तो निहाल हो जाएंगे सर, आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। तो हम पूरे प्रदेश में इसके प्रयास कर रहे हैं कि इसका विस्तार हो।
0: गोयल साहब, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे, एक श्रोता फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ सर।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सर अनिश्राज मीणा बोल रही हूँ, दिल्ली आई की जैविक कृषि फार्म से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं
2: सर। मैं करे मिला के जैविक खेती बढ़िया बात है, पर सर बीज मतलब जो दूर खेती कर रहे थे ना उनसे जमीन खराब होगी, मतलब बीज काफी ज्यादा जो मतलब 20 किलो पड़ गया था, जब मतलब 40-50 किलो पड़ गया जबकि मतलब मेरे अंकुरित हो रही सर। मिलाएंगे
1: सर, आपने एक बात पूछ रहे हूँ, आपने बीज ट्राइकोडर्मा डालो कौन डालो? मैं आप वही पूछ रहे हूँ कि थे आप ये कह रहे हो ना कि आपका बीज ज्यादा डालना पड़ा, आपको
2: ज्यादा डालना पड़ रही
1: मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटीज हमारे जो सेंटर्स हैं वो खुद उत्पादित कर रहे हैं। आपने सुना है ट्राइकोडर्मा का नाम?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो ट्राइकोडर्मा आप अपना जो बीज तैयार करें, एक तरीके का फंगसाइड है और बहुत डिमांड है, हम जितना डिमांड है उसकी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसमें बीजों का आप अच्छे से उपचार करें लगाने से पहले, फिर आपका बीज की क्वालिटी कौन सी है वो देखें कि बीज कौन सा है आपका। अगर आपने बहुत पुराना बीज ले लिया तो सही नहीं होगा, आप

0: उसका अगर उसमें नमी सही नहीं है तो उसकी दिक्कत आ सकती है। फिर भी अगर आपको कोई हो तो आप हमारे विभाग में बताएं, हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे। और एक और मैं आपको मीना जी को और बताना चाहूं सर, आपके माध्यम से हमारा एक इंस्टीट्यूट है सीएम, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। मंत्री महोदय ने, कृषि मंत्री महोदय ने अभी कल ही फाइल अप्रूव करी है। अब वहां भी अभी तक तो वो खाली सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग के लिए था, अब हमारा बहुत बड़ा हाल है, हम वहां पे बुला के नियमित रूप से प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोगों को बताएंगे। तो आप वहां पे आए, पूरा विधि से हम करेंगे, वो किसानों के लिए हमने खोल दिया, वो किसान भी वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं, अभी वहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी ले सकते थे। तो मेरा साहब आप आइएगा, हम आपको पूरा बताएंगे, बीजों का पूरा उपचार करके अगर आप करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको।
1: जी गोयल साहब, बहुत धन्यवाद
2: सर। मीना जी आपका बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, अभी अभी आपने कहा कि किसी भी तरह से अगर हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह की ट्रेनिंग जैविक खेती के लिए दे रहा है, कहां दे रहा है, और किस प्रकार से किसान अगर उससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, ये बहुत विस्तृत विषय आपने पूछा है, तो मैं आपको पूरा इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं प्राकृतिक खेती के लिए बहुत संवेदनशील है, प्रमोट कर रहे हैं कि हमें धरती माता बचाओ अभियान शुरू करना है, हम कर भी रहे हैं। तो अभी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2024 में शुरू किया है भारत सरकार ने, जिसमें राज्य का भी 60-40 का रेशियो है, 2500 करोड़ की योजना है, उसमें 7.5 लाख हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो मैं चीज मैन बताना चाह रहा हूं, जो सवाल आपका है, 15,000 हम प्राकृतिक खेती के क्लस्टर्स बना रहे हैं। उस हर एक क्लस्टर में किसानों की संख्या अलग अलग रहती है, उन किसानों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनका सर्टिफिकेशन करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनको हो जाए। फिर एक बीआरसी हम बना रहे हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जहां भी किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लस्टर में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10,000 बने पूरे देश में, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है, हम 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक खेती के जो क्लस्टर बन रहे हैं उनमें ट्रेनिंग हो रही है। जैसे मैंने निवेदन किया कि हमारा जो सियाम इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है, अभी तक अधिकारी कर्मचारी की होती है, वो किसानों के लिए हमने खोल दिया, वहां पे हम नियमित रूप से इसका ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। एक हमारे एटीसी होता है जहां पे ट्रायल सेंटर है, ये यहाँ पे हमने प्राकृतिक खेती के बैड बनाए हैं। फिर से मैं श्री राम शांता संस्थान कोटा का आभारी हूँ कि उन्होंने सब जगह के प्राकृतिक खेती के बैड्स बनाए हैं और वहां पे क्लस्टर्स बनाए कि किस तरह से वो ट्रेनिंग करेंगे। फिर एक जो ट्रेनिंग है हमारे जो केवीकेस है, हमारे कृषि विकास केंद्र है, वहां किसान विकास केंद्र है, वहां भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक हमने कृषि सखी जो है उस पे हमने उनको कृषि सखियों को एक्टिव किया, वो कृषि सखियां घर जा जा के किसानों को ट्रेनिंग दे रही हैं। और पहली बार हमने 20 लाख रुपए के नगद इनाम इन कृषि सखियों को देने की अगले महीने से शुरू कर देंगे। इसमें वो घर घर जाएंगी और ट्रेनिंग देंगी।
2: गोयल साहब, हम अपनी इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक श्रोता, एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं श्याम मिड्डा बोल रहा हूँ जी, जिला हनुमानगढ़ से मिल जाते
2: जी। जी जी,
0: नमस्कार मिड्डा साहब, कैसे हैं?
3: नमस्कार जी सर, ठीक है सर। मेरा एक सवाल था
0: जी, जी मिड्डा साहब,
3: जैविक खेती के जो उत्पाद होते हैं हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगे दामों पर मिलते हैं
0: जी जी,
3: इनके कोई मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं जी?
0: चलो, आपने एक मिनट सर, मेरा तो बहुत अच्छा आपने खुद जवाब मिल गया एक श्रोता से कि इनके उत्पाद बड़े महंगे मिलते हैं, तो जैविक खेती करने वाले भाई बहन ये समझे कि आपके उत्पाद महंगे मिलेंगे। क्योंकि मिड्डा साहब क्या होता है कि ये कोई आप नई चीज करते हैं तो उनको मार्केटिंग प्रॉपर मिलना करना वो बड़ा एक प्रश्न रहता है। इस कारण जो उत्पाद है वो थोड़े महंगे हमें लगते हैं, पर स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है मिड्डा साहब। तो स्वास्थ्य जो स्वस्थ अगर है मैं, हमारा परिवार है, हमारी पीढ़ियां है, अगली पीढ़ियां, तो थोड़े महंगे जरूर है, महंगे होने चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं कि जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद है, ताकि किसान जो इसमें मोटिवेट हो सके। हाँ, आपका ये एक सजेशन है कि इसमें हम एक वो प्लान कर रहे हैं कि हमारा एक इसमें पोर्टल बने,

0: उस पोर्टल पे सारे उत्पाद जो हमारे सर्टिफाइड एजेंसी के हैं सारे उत्पाद रहे, आप सीधा ऑनलाइन भी उसमें कर सकें, आपको रेट्स भी मिले, ये हम काम कर रहे हैं आपकी मंशा के अनुरूप
1: जी। गोयल साहब, जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेशन होने के बाद में प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं वो काफी हो जाती हैं, यहां हम फिर वही चीज है कि सर्टिफिकेशन की बात पर आते हैं, तो सर्टिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है और अगर कोई किसान जैविक खेती कर रहा है तो वो उसके जैविक सर्टिफिकेशन के लिए कहां किस तरीके से उसको सर्टिफाई करवा सकते हैं?
0: जी जी वर्मा साहब, हमारे राजस्थान में रोसोका है, एक राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी
1: जी,
0: ये जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उनको सर्टिफाइड करते हैं और वो ऑनलाइन सबका विवरण उपलब्ध है कि किन किन का, इसका बड़ा सिस्टमेटिक है हर साल।

0: सबका विवरण उपलब्ध है कि किन किन का, इसका बड़ा सिस्टमेटिक है, हर साल उनका परीक्षण होता है, उसके उत्पादों की टेस्टिंग होती है। और हमने अब की बार इसको, पहले रेट ज्यादा थे, अब हमने सिर्फ 500 रुपए कर दिया। 500 रुपए में प्रदेश का कहीं से भी कोई भी किसान इसमें अप्लाई करके कर सकते हैं। और जिला स्तर पे भी हमने इसको स्ट्रोंग किया है कि कोई भी आके अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहां तो हम प्लान कर रहे हैं कि पूरे जिले के जिले उसमें जो प्राकृतिक खेती के लिए रजिस्टर हो। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आप जिला अधिकारी हमारे कृषि विभाग से संपर्क करें, रसोका हमारा जो कृषि पंत कृषि भवन में पूरा स्टेट हेडक्वार्टर है, पूरी टीम है, वहां भी आप इसमें संपर्क करके करा सकते हैं
1: जी। गोयल साहब, यहाँ एक थोड़ा सा हम कंट्रोवर्सी वाली बात भी करना आपसे चाहेंगे कि कई बार एक सर्टिफाइड जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ माल फंक्शनिंग भी होने की संभावना रहती है, तो उसका मॉनिटरिंग का क्या मैकेनिज्म है कोई, या डेवलप किया जा रहा है?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने जैसे निवेदन किया कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है सारी सूचनाएं, और किस तरह से इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, पोर्टल में पूरी डिटेल उपलब्ध है कि कौन कौन सी एजेंसी है। हमारा इनके रेगुलर सैंपल लिए जाते हैं, जब नवीनीकरण होता है हमारी टीम जाती है, देखती है, और निरंतर अगर एक बार किसी ने बेच लिया तो अगले साल वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो रेजिड्यू जो टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि ये इसने पेस्टिसाइड यूज किया है कि नहीं, तो इसका हम ध्यान रखते हैं। और फिर हर जगह हमने जो प्रोडक्ट होता है उस पर हम सर्टिफाइड करते हैं कि ये आप इस पे लिखा है। ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन लाइव रखिए। कोई भी व्यक्ति इसमें पोर्टल पे जाके डिटेल ले सकता है कि किस किस का रजिस्ट्रेशन है, कब हुआ, इसकी वैलिडिटी क्या है, पूरा इसमें साइंटिफिक ढंग से। हाँ, अगर कोई शिकायत भी मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं कि ऑर्गेनिक के नाम पर कोई दूसरी चीज नहीं सेल करे
1: जी। गोयल साहब, हम बातचीत तो अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि हम कार्यक्रम में बैठे हैं, तो अब हम थोड़े से मनोरंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक गीत और सुनते हैं।
0: बिल्कुल जी।

0: 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं जैविक खेती नए आयाम और आज हमारे साथ में एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल जी उपस्थित हैं। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती नए आयाम के विषय पर और गोयल साहब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम संतोष खिदर है, गांव बेरी जिला सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ।
0: जी बताएं।
2: नमस्कार संतोष जी।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्ते, आप कैसे हैं?
1: ठीक है सर।
2: ये तो मेरी लॉटरी लग गई, आप जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हमारे। मैं वर्मा साहब बताना चाहूंगा कि परसों ही हमसे मिले हैं ये
0: जी,
2: और इनका काम देखते हुए इनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राज्य सरकार की ओर से। महिला ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे हमारी
0: जी,
2: और 10,000 रुपए हम इनको प्रति माह देंगे और हमारे सब जगह ट्रेनिंग में जाएंगे। इनकी एक और खासियत है, ये अनार क्वीन के नाम से फेमस है वहां पे। तो आप अपने प्रोग्राम में आप जुड़े, बहुत बहुत आभार। आप बताएं संतोष जी, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं?
1: सर मैं जैविक खेती के बारे में बताना चाहूंगी कि जो हमारी जो धरती है इसमें जो किसान भाई जहर डाल रहे हैं तो हमारी खेती है वो खराब हो रही है, और सबसे ज्यादा हमें जैविक खेती की ओर ध्यान देना है क्योंकि उसमें हम अगर जीवा अमृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है वो बना करके हम डालते हैं तो हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो ज्यादा बढ़ेगी और इसमें हमें आमदनी है वो भी ज्यादा होगी। क्योंकि सभी किसानों को मैं बागवानी की ओर लाना चाहूंगी, इसके अंदर हमारी एक तो पानी की बचत होगी और इसके साथ ही हमें उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, ताकि किसान भाई इसे अगर बेचता है कहीं पर भी तो उसकी डबल कीमत मिलेगी और रसायन से उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, वो सभी इन्हीं की बदौलत से आ रहा है। बिल्कुल केमिकल हम बंद करना चाहते हैं
2: जी। मेरे को तो मैंने तो थे एक सवाल को जवाब वो बताओ, मैं थारी भाषा में बात कर रहा हूँ। लोग आके लग रहे हैं कि सब इन्हें उत्पादन कम हो, तो थारो अंडो के कम हो ज्यादा हो कहीं कहीं सुबह बताओ।
1: देखो साहब, एक माए आमदनी एक माए उत्पादन है ना, वो कम होती तो दिन अपन रेट डबल मिल रही है तो बात तो बैठी आगे।
2: सही कह रहे हो।
1: हाँ तो सर किसान भाई में आई कहना चाहूँ की अगर आपने उत्पादन कम हो रहे सिर्फ 1% को फर्क पड़ा है, वो भी 1 या 2 साल के लिए बाद में वो बैठे आ गया है। तो इसीलिए अपन इनकम मिली है तो अपन डबल मिली है। बैठे अगर रसायन को 100 रुपया में दे रहे हैं तो बिकी रेट अपन 300 मिली है तो बिको बैठे ही अपन मिले है। तो इसलिए से किसान भाई ये क्योंकि अपन रसायन बिल्कुल छोड़ रहे हैं जी। साबु पंजाब में कैंसर की ट्रेन चल रही है, साबु राजस्थान में नहीं चल रहा है।
2: बहुत अच्छी बात कही है। तो थारा घर वाला थाने सपोर्ट करे जो तो काम शुरू करे थे?
1: जी सर, मेरा घराला तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट रही है। जब कह करे ना गाड़ी का 2 पहिया हुए, 1 पंचर हो जाए तो गाड़ी चालक ने बैठे रुक जाए।
2: ठीक है, बहुत बड़ी व्यवहारिक बात है। तो थारा जगह भी धार करने कम है, फिर बहुत सारा प्रोडक्शन ले रहे थे, अनार भी लगा रखे है, सेब भी लगा रखे है, और के करोबा में थे?
1: जी मैं साहब मैं जिया मौसमी किलो कह करे ना कि हिमाचल में सेब हो गए, वो सेब भी राजस्थान में लगाए हमने, आपने बादाम है बाद राजस्थान में लगाई है, हर चीज में राजस्थान में लगा के दिखाई है। और इससे सागे का पेड़ मदर प्लांट बाकी मैं पौध नर्सरी तैयार करूँ।
2: बहुत बढ़िया। तो थे हमारे सागे कंधे मिला के चलो, आप प्राकृतिक खेती ने और बढ़ावा देवांगा और सारा किसान भाई बहना ने थे बताओ भी थे कर रहे हो और सारो माहौल बढ़िया हो रहे है।
1: जी सर, से किसानों में यही ट्रेनिंग दे रही हूँ। आज मैं 8 जुड़ रही हूँ तो 6 किसान भाई में ये और आकर्षित कर रही हूँ की अपन बागवानी मानो है और बिल्कुल प्राकृतिक खेती की
2: बात। बहुत अच्छी बात लगी, बागवानी में भी प्राथमिकता परंपरागत फसलों की बजाय
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोयल साहब, जैसे अभी आप ये महिला किसान प्रगतिशील किसान हैं और ये आपके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इस तरीके से जो जैविक खेती में अच्छे काम करने वाले जो किसान हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, जैसे ये महिला किसान है तो आपको आपने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसी तरीके से अगर कोई अच्छा जैविक खेती कर रहा है किसान तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या फैसिलिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से हैं और क्या उन्हें आप प्रोवाइड करवाते हैं?
2: सर अभी हमने जैसे मैंने कहा 3 ब्रांड एम्बेसडर मैं बना चुका हूँ, और कोटा का जो श्री

0: अनुसंधानी संस्थान है, थोड़ा सा मैं बार बार उनका मेरे को आभार करने का मन होता है। ताराचंद जी गोल बसव है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है सीएसआर में। उन्होंने कहा सब जितना खर्च चाहिए बोले, बहुत बड़ा उनका गोल साहब उनके नाम से उनका काम है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम। तो उनकी मदद से हम बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। दूसरा कृषि सखी का जो मैंने बताया 20 लाख के अवार्ड अगले महीने से हम शुरू हो जाएंगे। और राज्य सरकार जो अगर 2 साल तक प्रति क्लस्टर हेक्टेयर हम 4,000 रुपए 2 साल तक उनको जो प्रकृति खेती करता है उसको सुविधा देते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारा जोबनेर यूनिवर्सिटी में है प्रकृति खेती का, वहां हम किसान को बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। सियाम में मैंने बताया आपको शुरू कर दिया। और जो किसानों को हम विजिट कराते हैं, किसानों को विजिट कराते हैं, 2 तरीके की विजिट होती है। एक तो यहाँ पे जो राज्य के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूट है वहां पे विजिट करें, जो लोग हैं उनसे करें, और दूसरा जो राज्य के बाहर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करें, गुजरात में बहुत बड़ा काम हो रहा है उसमें हम किसानों को विजिट कराते हैं। प्रतिवर्ष हम किसानों को पुरस्कार दे रहे हैं, अभी जैसे पुरस्कार निकले हुए प्राकृतिक खेती पे 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार भी हम देते हैं किसानों को कि जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करते हैं। उनको अभी 15 अगस्त पे मैंने बहुत सारे किसानों को बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनको डिटेल से उनके जो किसान उनको ट्रेनिंग दिलाई किया, इस तरह काम कर रहे हैं।
1: अनुग्रह साहब हम अपनी बातचीत पर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ में जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो
2: जी
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: राधे राधे।
1: राधे राधे
0: जी, राधे
2: जी। जी मेरा नाम रमेश शर्मा है जी, मैं राजस्थान के डीग जिले के कामबन क्षेत्र का किसान हूँ।
0: नमस्ते,
1: बताएं
2: जी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की प्रेरणा से मैं प्राकृतिक और जैविक खेती करे किसान में प्रयास कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
2: हमारा मानना है कि खेती केवल अनाज पैदा के जरिए ना है बल्कि धरती मैया की सेहत, पर्यावरण की रक्षा और किसान परिवार की खुशहाली को आधार है।
0: बहुत बढ़िया जी।
2: और प्राकृतिक और जैविक खेती से मैंने कई फायदे देखे हैं
0: जी।
2: पहली बात तो ये है कि रासायनिक खाद और कीटनाशक से निर्भरता घटाने से खेती की लागत में कमी आई है
0: जी।
2: दूसरी बात, गोबर गौमूत्र और फसल से बचे हुए अवशेष से मैंने गांव में प्राकृतिक खेती के कई सारे काम करे हैं।
0: बहुत बढ़िया।
2: इससे मिट्टी की भी उर्वरता बनाए रखने का काम हो रहा है और बातें जमीन की भी सेहत सुधर रही है
0: जी।
2: मेरा तो ये मानना है कि धरती मैया स्वस्थ रहेगी तो खेतीबाड़ी भी अच्छी होगी और किसान भी खुशहाल रहेगा।
0: बहुत बढ़िया बात की जी, आप सही कह रहे हैं। अगर धरती को हमें आगे वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो हमारी मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी पीढ़ियां स्वस्थ रहेंगी
1: जी।
2: बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। हमारी तो यही इच्छा है साहब कि अपने खेत में प्रकृति और जैविक खेती अपनाएं और ऐसी मिसाल पेश करें कि किसान भाई की प्रेरणा मिले और या तो धरती मैया की भी रक्षा हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो।
0: बहुत बढ़िया। हम मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे श्रोता को कि राज्य सरकार ने अभी धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया, इसमें हम किसानों को पूरी जो अवर में से पूछे थे पूरी ट्रेनिंग दी, हमने बताया उनको, व्यवहारिक ट्रेनिंग हुए, सेशन हुए। इसी तरह एक अभियान शुरू किया आपनों खेत आपनी खाद, उसमें भी हम किसानों को जो हमारी परंपरागत जो गो आधारित खेती और गो आधारित जो हमारे प्रोडक्ट है उनके इस्तेमाल के लिए हमने प्रेरणा की। अभियान बहुत पॉपुलर हुए, केंद्र सरकार ने इसको सराहा। मेरा मानना है वर्मा साहब की मिट्टी एक बैंक खाते की तरह है, इसमें खाली पोषक तत्व हमेशा आप निकाल नहीं सकते, इसमें आपको पोषक तत्व डालने रहेंगे निरंतर ताकि ये हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे। और धरती माता प्रकृति बड़ी दयालु है, देखो एक बीज अनार का लगाते हैं तो कितने करोड़ों अरबों बीज तैयार होते हैं एक बीज से। तो प्रकृति में कहीं कमी नहीं है, प्रकृति बहुत दयालु है, हमें उसके साथ चलना है, उसके अनुरूप प्रकृति का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर रासायनिक खेती करेंगे तो हमारी प्रकृति माता को हम बांझ करेंगे, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म करेंगे
1: जी। गोयल साहब, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे किसान, अगर हम राजस्थान की बात करें तो बहुत छोटी जोत के भी किसान हैं, बहुत कम रकबे के अंदर वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहीं जैविक खेती का जब से इतना नाम आगे आया है, जो स्टार्टअप्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अब आगे जाकर के आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें।

0: कॉर्पोरेट्स के और स्टार्टअप्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने से क्या उन छोटी जोत के किसानों को कोई नुकसान होने की संभावना है?
1: नुकसान नहीं होगा, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं बताता हूं कैसे। अभी हमारे कृषि विभाग ने, मैंने 38 जो स्टार्टअप है, एनजीओ है, एफपीओ है, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे एमओयू किया। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उन एफपीओज के माध्यम से हम सारे किसानों से जुड़ रहे हैं और उनमें कई तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तो संस्थान है, वो 15 जो प्राकृतिक खेती करने वाले समूह है उनका है, तो एफपीओ बन रहे हैं। एफपीओ में 200 लोग जो कह रहे हैं ना आप छोटे, वो उन एफपीओ के माध्यम से जुड़ रहे हैं, एफपीओ को कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एग्री स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको फंडिंग की है। हमारे जो उनको जो एक मंच प्रदान कर रहे हैं राज्य सरकार, एग्री स्टार्टअप को हम 35 पुरस्कार देते हैं, 5 पुरस्कार हैं, 25-25 लाख के पुरस्कार कहें या सहायता राशि कह सकते हैं उसको, सहायता राशि 25-25 लाख की 5 है, और जो 5-5 लाख के हैं, 6-6 लाख के हैं, तो कुल मिला के 35-35 जो हमारे एक नियम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो 35 पुरस्कार दे रहे हैं। जोगनियर यूनिवर्सिटी 35 पुरस्कार और जो सहायता राशि दे रहे हैं, तो पूरा किसान इससे जुड़ते हैं, उनको लाभ हो रहा है किसानों के इससे जुड़ के, और हो रहा है किसान, जैसा कि बहन संतोष बता रहे थे कि इससे जुड़ रहे हैं, वो जो जो हॉर्टिकल्चर है, जो फसलों के पैटर्न चेंज कर रहे हैं।
0: गोयल साहब, हम अपनी बातचीत को, इस बातचीत को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक श्रोता एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। हेलो
2: जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जगदीश प्रसाद पारिक बोल रहा हूँ सर।
0: जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मैं अजीतगढ़ का किसान हूँ और 11 मार्च 2019 को मुझे जैविक खेती में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: अरे वाह सर, हम तो धन्य हुए, फिर तो आपसे मिलना पड़ेगा। आप बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
2: और सर मैं जैविक खेती कर रहा हूँ 1957 से, 8 वर्ष की उम्र से मेरे मामा जी के साथ सीखा। 1970 से आज तक किसी प्रकार का रसायन और खाद का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने खेत पर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि बना करके और खेती की है। और उसमें वेट बढ़ाने का मेरा था कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वजनी हो वो जैविक प्रणाली से अपने हिंदुस्तान का हो, तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने हर सब्जी का वेट और लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है जैविक से। लोगों की ये धारणा थी कि जैविक से उत्पाद कम होता है, लेकिन मेरी ये धारणा है कि रसायन से 2.5 गुना जैविक में ज्यादा उत्पाद होता है।
1: आज आपने दिन बना दिया मेरा ये बात करके, मुझे और ज्यादा हौसला हो गया। कम से कम कहाँ रहते हैं?
2: 25 किलो 150 ग्राम का गोभी का फूल बनाया है, 1 मीटर लंबा बैंगन बनाया है, और 12 किलो की पत्ता गोभी बनाई है, 86 किलो का कद्दू बनाया है, 6 फीट लंबी लौकी बनाई है, और 7 फीट लंबी तुरई बनाई है। सभी जो सब्जियां हैं उनका वेट बढ़ाया, सब ऑर्गेनिक है।
1: मुझे आज आकाशवाणी से ऐसे ऐसे बढ़िया लोगों से वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं धन्य हो गया। मैम साहब, आप कहाँ रहते हैं?
2: अजीतगढ़ है सर, ये जयपुर के पास में ही अजीतगढ़।
1: तो फिर तो पधारो आप, हमारे एक दिन मिलने आओ उनसे और हमें नंबर भी दीजिएगा।
2: मैंने कुछ तकलीफ की है जी, परंपरागत जैविक कृषि उसकी एक प्रति आपको भेंट करने के लिए मैं 2-3 दिन में ही आपके पास उपस्थित होगा सर।
1: बहुत बढ़िया, स्वागत आपका, धन्यवाद।
2: यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल सर पानी की बिल्कुल कमी है
1: जी जी,
2: तो उसके लिए जो बरसात का पानी बह करके जाता है उस पानी को रोक करके रिचार्ज करके मैंने 7.5 HP की इलेक्ट्रिक मोटर और 5 HP की ये मोटर लगा करके उन 20-25 बीघा में सिंचाई करता हूँ साल भर।
1: बहुत बढ़िया सर।
2: और पशुपालन, इसके अलावा पशुपालन सबसे मुख्य है कृषि के लिए, जो पशुपालन कर
1: माता पालेंगे तो माता तो सबकी, माता का मतलब ये होता है कि जो सब कुछ देती है, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए माता बनाई उसने, और गौ माता को हमने माता का इसलिए दर्जा दिया है कि वो हमारा संपूर्ण पालन पोषण करती है, और उनके जो गोबर और मूत्र और उससे प्रोडक्ट है वो अमृत तुल्य है। सोने अभी तो जो रिसर्चेज हो रही है नई नई, तो बहुत अद्भुत रिसर्चेज हो रही है।
2: इस पर सर 2 लाइन बोल दूं मैं?
1: बिल्कुल बोलो सर।
2: दांतों तले तरण दबा कर जीव गायें कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुष्य है क्या तुमको यही सही।

0: माँ की तरह हमने तुम्हें है दूध पीने को दिया, देकर कसाई के यहाँ तुमने हमारा वध किया। जारी रहा यदि ये क्रम, जारी रहा यदि ये क्रम यूं ही हमारे नाश का, तो समझो अस्त है सूरज भारत भाग्य के आकाश का। भारत को बचाना है, देश को बचाना है, देश के नागरिकों को बचाना है, पशु पक्षियों को जानवरों को बचाना है, तो सबसे पहले कृषि के साथ गौ माता का गोपालन करना जरूरी।
1: बिल्कुल आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के, और गौ माता का संवर्धन के लिए जो राज्य सरकार प्रयास कर रही है, हर जगह गौशालाएं हैं और हम इसमें करेंगे, और गौ माता के जो उत्पाद हैं उनको हम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका
2: पारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, हमारी बात चल रही थी जो स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में, कि आपने कहा कि उससे जो छोटी जोत के किसान हैं उन्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट मिलने की संभावना अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जो ये स्टार्टअप्स हैं, अगर कोई स्टार्टअप अभी बिल्डअप करना चाहता है, उसमें कोई काम करना चाहता है, गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या उन्हें सुविधाएं और मिल सकती हैं?
1: सर, एक तो हमने हमारे कृषि विभाग में मुख्यालय में फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, तो वहां पे सारे जो स्टार्टअप है उनको रेगुलर ट्रेनिंग होती है, बच्चों को उनको बताते हैं। यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि साहब इस तरह से आप स्टार्टअप बनाइए, ये सुविधाएं हैं जो मैंने आपको आग्रह किया कि जोबनेर यूनिवर्सिटी और हमारा जो नियम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वो भी हमारा इसमें सहयोग कर रहा है। तो स्टार्टअप रजिस्टर कराएं, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको फंडिंग करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको बता सकते हैं कि आप कहां कहां किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। इवन हम उनको जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स है उनमें शामिल कर रहे हैं। हमने कुछ स्टार्टअप को हमारे ऑन रोल भी किया है, तो कोई स्टार्टअप है और उनके पास अच्छा आइडिया है तो उनसे संपर्क करें, हम हर तरीके की उनको सहायता करेंगे, उनके मार्केटिंग पैकेजिंग, उनका जो इससे रिलेटेड जो फील्ड है, कहां कहां उनके प्रोडक्ट बिक सकते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में युवा हमारे इससे जुड़ रहे हैं।
2: जी गोयल साहब, एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं दिलीप सिंह गहलोत बोल रहा हूँ सर, जैसलमेर जिले से।
1: नमस्कार सर।
3: और हाँ नमस्कार सर, और आत्मा से राज्य स्तरीय पुरस्कार से अवार्ड हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
3: 15-16 में, और सर अभी 2026 में ICR ने भी मेरे को दिल्ली में अवार्ड दिया है।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: सारे तो मैं ये जैविक खेती, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है आपकी सर, जैविक खेती मैं 2014 से कर रहा हूँ।
1: जी जी।
3: और राजस्थान स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जयपुर से मैं अटैच हूँ।
1: जी जी।
3: 2014 से। तो इसमें सर मेरा ये मानना है कि किसान इसमें आगे बहुत कम बढ़ पाए हैं जैविक खेती के अंदर। तो एक तो सर पहले इनकी फीस, एजेंसियों की फीस बहुत ज्यादा थी।
1: जी जी।
3: 2014 से जब मैंने फीस भरनी की तो धीरे धीरे हमने काफी बार ये क्वेश्चन उठाया, तो उन्होंने कम जरूर की।
1: अभी 500 रुपए कर दिए हमने, उसको हाँ, भी आप कहोगे तो
3: धीरे कम किए सर।
1: 500 रुपए कर दिया, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी हमने इजी कर दिया है। इसमें कोई आप जुड़े हुए हैं और भी कुछ सुझाव वो तो बताएगा, हमने जिला लेवल पे भी इसको लेके गए हैं हम।
3: अच्छा, और मेरा एक ये सुझाव है सर कि जिस तरह से किसान को यूरिया उपलब्ध कराई जाती है खेतों में डालने के लिए,
1: जी जी,
3: उसी तरह से एक जैविक कंपोनेंट यूरिया की तरह निकाला जाए जो यूरिया से भी सस्ता हो,
1: बहुत ही अच्छा
3: सुविधा अवेलेबल कराई जाए ताकि वो किसानों तक पहुंचाए।
1: वैसे तो हम कर रहे हैं, इसमें हमने कुछ सेंटर बनाए, लेकिन आपने जिस रोचक ढंग से रखा है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सर एक बीच में गहलोत साहब लाइन पे है, मैं छोटा सा बताऊं आपको कि आपको पता है गहलोत साहब की सरकार यूरिया पे कितनी सब्सिडी देती है? बहुत कम किसानों को पता है। आपको पता है?
3: बहुत कम पता है, नहीं सर मुझे नहीं पता।
1: आपको 267 रुपए का मिलता है, 267 रुपीज का।
2: जी।
1: आज की डेट में सरकार इस पे 2700 रुपए की सब्सिडी दे रही है एक कट्टे पे। एक किसानों को पता नहीं है, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, इसको सस्ता मांग के खेत में ज्यादा डालते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं, संतुलित उपयोग नहीं हो रहा। उनको लगता है कि साहब ज्यादा यूरिया डालने से, ज्यादा DAP डालने से हमारा उत्पादन ज्यादा होगा, नहीं ये उल्टा नुकसान करता है। है क्या नाइट्रोजन और इनके
3: उत्पादन ज्यादा नहीं होगा यूरिया डालने से।
1: ये आप लोगों में कम करिए, प्रदेश में अभी कहीं कोई कमी नहीं, यूरिया DAP की एक हंगामा कर रहे हैं लोग के साथ।

0: कहीं कमी नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कम डालो, आप संतुलित उपयोग करो और इतना जो सरकार आपके साथ खड़ी है हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे जैविक है चाहे और है, दूसरे भी हम उपलब्ध कराएंगे।
1: जी मेरा कहना ये है सर कि जैसे अभी मार्केट में आपने 266 बताया, लेकिन वो 300 के आसपास
0: वो लगता है, देखिए वो कई बार FOR वो लग के आ जाती है हर जगह, क्योंकि उसके चार्जेस भी रहते हैं और FOR है।
1: मेरा आपसे ये निवेदन है सर कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है, किसान तो उसको फॉलो कर सकता है जो आप करोगे, कि जो 300 रुपए के आसपास ये यूरिया का बैग मिल रहा है, इसी तरह से सर 50 किलो की पैकिंग में 300 के जगह आप भले 400 रुपए भी उसकी कॉस्ट होगी तो भी वो किसान इजीली देगा। तो यूरिया का ऐसा एक कंपोनेंट भारत सरकार
0: से या राज्य सरकार में तैयार काम करूंगा, आप मिलिएगा मेरे से आके, हम इस पे दोनों एक संयुक्त प्रस्ताव बना के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करेंगे, और बहुत संवेदनशील है ऐसी चीजों के प्रति, और हम इस पे देंगे तो धीरे धीरे इसका उपयोग कम होगा और उधर हो जाएगा। जैव उर्वरक है हमारा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा की एक और मैं बता रहा हूं आपको कि ट्राइकोडर्मा का हम अब निजी क्षेत्र के साथ जाके प्रोडक्शन करने वाले हैं, इतनी डिमांड है, हम यूनिवर्सिटीज इसको कर नहीं पा रही है, बहुत स्टेटस है, तो इस तरह की चीजें हम करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने,
1: धन्यवाद।
2: गोयल साहब, ये गहलोत साहब से हमारी बात हुई, बहुत ही फ्रूटफुल बात थी और बहुत जो उन्होंने सुझाव दिए काफी अच्छे थे। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ेंगे।
0: जी।

0: 101.2 एफएम जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं जैविक खेती नया आयाम। और आज हमारे साथ में एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल जी उपस्थित हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में गोयल साहब एक श्रोता जुड़े हुए हैं। ये हमारा आज की इस प्रोग्राम का आखिरी फोन कॉल होगा, हम उनसे बातचीत करते हैं। और जी हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी सर, माधव प्रसाद यादव बोल रहा हूँ।
2: हाँ नमस्कार यादव सर, कैसे हैं?
1: सर बढ़िया बढ़िया सर,
2: हाँ जी बताएं सर।
1: जी सर,
2: तो कहाँ पे हैं, क्या करते हैं यादव साहब?
1: सर मैं यहाँ पे पावटा कोटपुतली दिल्ली रोड के ऊपर जमीनें जो पड़ी है उनको लीज पे लेता हूँ, 8 साल 6 साल 7 साल के लिए, और फिर उनको ठीक ठाक करके। और
2: बिल्कुल बिल्कुल आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत बड़ा। हाँ जी बताएं, विवरण बताएं, डिटेल। हम
1: सर मैं लगभग 2015 से कर रहा हूँ, 400 एकड़ के अंदर।
2: अच्छा, सारी प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं?
1: हाँ सर, पूरा मतलब गोबर खाद वगैरह, ये आपका पुराना पैसोलोमाइसिन ट्राइकोडर्मा छाछ वाछ इकट्ठी करना, ये करना, ये लगभग सब कंप्लीट करता हूँ।
2: तो कितना प्रोडक्शन है आपका, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को?
1: सर मैं तो क्या ज्यादा इस टाइम में फूल गोभी करता हूँ, आगे चिल्ली और कैप्सिकम, शिमला मिर्ची और मिर्ची और तरबूज वगैरह और खरबूजे।
2: अरे
1: तो ये लगभग मैं 8-10 प्रकार के अलग अलग कलर के तरबूज लगाता हूँ, अंदर से पीले बाहर से पीले वगैरह अलग अलग जो आते
2: हैं। बहुत प्रोग्रेसिव किसान, तो आप आइएगा, डिटेल बताइएगा, हम आपके ट्रेनिंग कराएंगे सब किसानों को। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतने लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है आपका। ये मिस का मिथ है क्या कि प्रोडक्शन कम हो जाता है जैविक खेती?
1: नहीं सर, ये क्या है कि अभी कल मेरे पास एक किसी कंपनी वाले का फोन आ रहा था, चिल्ली वाले का, तो उसका फोन ये आ रहा था कि सर हमारी वायरस टोनेट वैरायटी है। तो मैंने उसको कहा सर 2015 से लेकर आज तक हमने वायरस देखा ही नहीं।
2: अच्छा
1: जी, क्योंकि हम क्या है अभी मेरे पास साल भर तक की पुरानी छाछ पड़ी है, छाछ के अंदर थोड़ा तांबा थोड़ा लोहा वगैरह डाल के गुड़ मिला के और हर 15 दिन में एक स्प्रे करते हैं, वायरस अगर आ भी गया ना तो भी खत्म हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: हाँ।

0: बहुत बढ़िया।
1: चलिए साहब, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे काम करते रहें।
0: वरुण साहब, एक चीज और इनसे यहां बात करके मुझे लगा, अभी हम एक हर किसान को उसके घर में स्वस्थ रहने जितनी चीजें वहां उगनी चाहिए रहनी चाहिए, इसलिए कृषि विभाग एक नवाचार कर रहा है। बहुत जल्दी हम 10 लाख किसानों को 15 किस्म के बीज उपलब्ध कराने वाले, जिसमें 5 औषधीय, 5 सब्जियों के, 5 फलों के, जिसमें अमरूद, आंवला, सहजन, तुलसी, नीम, तुरई, घिया, खीरा, काकड़िया, बेलपत्र, कचनार, संबल, गुलमेर, इस पे काम कर रहे हैं, ये उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्दी।
1: गोयल साहब, आपसे बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला, और अब हम ये बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा सुप्रियो बनर्जी का, प्रकाश बाबू शर्मा का, प्रसारण सहयोग रहा राजेंद्र सिंह डारा का, प्रस्तुतकर्ता बीएस यादव, संयोजन महेंद्र कुमार मीणा, और मैं आपका साथी जितेंद्र वर्मा। और आज हमारे साथ में उपस्थित थे एग्रीकल्चर कमिश्नर राजस्थान नरेश कुमार गोयल, और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ।
0: थैंक यू सर, बहुत ही आभार आपका, मुझे इतने सारे किसानों से आपने जुड़ा, इतना सारा मुझे सीखने करने का मिला अवसर, थैंक यू।
1: गोयल सर, आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और विषय पर बातचीत के साथ, आपसे चाहते हैं इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
3: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी में फेरेंगे।
2: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका

0: संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।
2: सुन सुन सुन जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम।
3: जा जा जा जा।

0: पतंग मैं
1: कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए और किसी के सामने जाके दिल बुझा लिए।
0: अरे सुन सुन।

0: ya, ya, ya, mi papá.
1: Sun, sun, sun, sun, zalima.
0: Are, ya, ya, ya, ya.
1: Are, sun, sun, sun, sun.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: ये आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
3: मेरी दुनिया, मेरी दुनिया।

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है बहू रानी।

आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।

0: बढ़िया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: ये आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी न कोई संदेह
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना जगजीत सिंह का संगीत फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। तो आज का हमारा सफर उन पंछियों के नाम है जो मौसम के साथ हजारों मील की यात्रा करते हैं, है ना? नए आसमान, नई दिशाएं और मंजिल की तलाश करते हैं। तो इनकी उड़ान हमें भी कुछ सोचने का मौका देती है, संदेश देती है। तो आइए पंखों के साथ कल्पनाओं को भी हम उड़ान दें और सुने आज का ये सुरीला सफर। चलिए पहले आज की इबारत पढ़ देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में पंछियों का एक झुंड हजारों मील दूर की यात्रा पर निकला है। ना उनके हाथ में कोई नक्शा है, ना रास्ते में कोई मील का पत्थर, फिर भी प्रकृति की अदृश्य दिशा को पहचानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं, धरती के रंग बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इन प्रवासी पंछियों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है, या सफर अपने भीतर कुछ नया खोजने का नाम भी है? हम इंसान भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं। कभी रोजगार हमें घर से दूर ले जाता है, कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां और कभी अपने सपने। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी उड़ान भरते हैं जहां मंजिलों का पता तो होता है लेकिन रास्तों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं होता। तो प्रवासी पंछी हम सभी को बात सिखाते हैं, दूर जाना पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं। मौसम अनुकूल होने पर ही लौटते हैं अपने लिए परिचित ठिकानों की ओर। शायद इसीलिए उनकी उड़ान में केवल बिछो नहीं होता, लौटने की उम्मीद भी छिपी होती है। जब इन पंछियों को देखकर हमारा मन भी उड़ान भरता है तो संगीत उस उड़ान को आवाज दे देता है, है ना? तो आइए आज सुरीला सफर में पंखों की सरसराहट सुने, खुले आसमान का विस्तार महसूस करें और उन गीतों के साथ उड़ चलें जो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए भी खुला है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है।

संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हूं या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पंछी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दे तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पंछी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे। कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे। जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है। अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। बहुत सुंदर। आई सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है और ये गीत आजादी उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही है कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं है ना। महसूस किया आपने? जी हाँ हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था। चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों जाना चाहेंगे वहां। सवाल फिर से नोट कर लीजिए। अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है सीमा रेखा खींच दी है उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा, क्यों? ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश है और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूं, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछाकर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं। अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरदराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं।

यह आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6ठी क्लास में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चौंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया, उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं।

हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं न कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ।

आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाज़ें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं, हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वही एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना।

बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं, पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू जैसी ही है, मूंगफली न मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूं। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूं, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है, परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, न कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र किशन के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही है, फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा, किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं न कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना? बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी नीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वही एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में, आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाई को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को, अच्छा, चिड़िया पालने का बहुत शौक है। कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंड ही पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं लेकिन जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

0: दो पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे।
1: तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण

में भारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख में चोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। यही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी भारत लिखी आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन, उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारह मास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाक

के जोड़े ने अंडे दिए पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाकटे वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है, उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है, उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना, ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है। इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे, अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दी इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, रोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख देना।

चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना

और पत्र पाना एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिये के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गई, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं

0: दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इश्यू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन

0: नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, बस ये सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री

0: आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: जो हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: हुआ।
1: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना किशोर कुमार की आवाज है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभुदयाल खटक और इनके मित्रगण, वीर शहर से रंजीत कुमार नामदेव, शोरात रीतेश, आकाश रश्मि रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

0: कभी।
1: लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार। और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से। हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन। बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना। संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेन्द्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, केआरएस, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह टंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम टंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नौगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगम्बर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं।

0: और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना ना ना ना ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 बजे उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती है, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेव।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों के खुशामदी, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है, अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है, तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हे लगता है चले, अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतार ली। आप कैसे घर चले आए इस वक्त, तब ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
3: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। आज सुबह सुबह मेरी

0: आग भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊं?
0: अच्छा अच्छा ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
0: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
0: क्या?
1: ट्रांसफर।
0: आपकी?
1: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे
0: मिली। ये कैसा अनर्थ हो गया?
1: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते खिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
0: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
0: आगरा। हाय राम।
2: हाय हाय क्या हो गया लाजवंती?
3: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
2: हाय कौन तो बहन?
3: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
2: दिल्ली में था कि बाहर?
0: नहीं बहन ये बात नहीं, आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
2: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
3: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
0: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
2: बहन फिर हुआ क्या?
0: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो किस्मत।
3: भाई साहब की नौकरी?
0: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं? आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
3: अनर्थ?
0: आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
2: हाय राम।
3: सबर करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती
0: तुझे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़ कर जाना पड़ेगा।
2: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बार ही उजड़ गया।
2: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान कराओ। मन को शांत रखो बहन और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन,
3: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
0: हूँ। नहीं बहन नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो
3: भाई? कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आओ सुशीला बहन।
2: हाँ हाँ हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
3: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
1: लाजवंती क्या सोच रही हो? लाजवंती
0: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो जरा जरा उसे पूछे तो।
1: न जाने कौन है।
0: किस कंबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
1: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम?
0: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
1: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप?
1: कृष्ण तुम
5: इस वक्त यहाँ?
1: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
0: क्या बताऊँ बेटे,

0: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
1: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
0: ओह, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
1: किसने, किस पर?
0: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
1: क्या बक रहे हो तुम? कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
0: ये सब धोखा है। आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
1: बेशक।
0: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
1: रजा, रजा।
0: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है। जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खिदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरफ निकालकर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
2: बदतमीज,
1: तुम नहीं जानते मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो, ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
0: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
1: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
0: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
1: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
0: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का, जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील, एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
1: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
3: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
0: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
1: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाला।
3: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी, कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
0: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
1: अब निखट्टू बेकार ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली।
3: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
1: करना क्या है, क्या हो सकता है? वो नहीं बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
0: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
3: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
1: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
0: कल से स्ट्राइक?
1: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
4: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
5: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
4: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही,
6: मामी, मामी,
3: पिताजी, आप बाप रे?
1: कौन?
3: मैं कोई नहीं।
1: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
6: उषा? हाँ, नहीं।
1: तो कौन घुसा है अभी घर में?

0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
1: ओहो, किसे कोस रहे हैं?
0: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहना रहा है?
1: ओहो, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
2: बुलाओ उसे।
1: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
3: ओह हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्ने नन्ने मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता।
0: विनय लौट आया कॉलेज से?
1: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
0: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
1: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
3: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा।
0: विनय।
4: जी पिताजी।
0: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
4: इफ यू डोंट माइंड पिता, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
0: कैसा सवाल?
4: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
0: विनय,
4: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
0: खबर आज ही आई है।
4: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
0: तुम्हारा मतलब क्या है?
4: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
4: पिताजी, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
0: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
4: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बम्बई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगे हुई है? सब कहेंगे आगे के पावर खाने में जा रहे हैं।
0: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
4: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
0: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
4: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
0: तुम्हारा सोशल सर्कल?
4: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
0: क्या, तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा कौन देगा?
4: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
0: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
4: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
0: और मेरे इस घरबार के साथ इसके साथ नहीं रहोगे?
4: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
0: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
3: हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
1: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
4: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
0: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले, बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
1: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बाहर उजड़ जाएगा।
4: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
4: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
3: हाँ, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
5: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
6: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
7: लंच के बाद आना।
6: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
7: तो फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
6: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
7: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
8: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
7: चलो।
6: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
7: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?

0: चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
1: है। चलो चलो चलो चलो, आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
2: नमस्कार बड़े बाबू जी।
3: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
4: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
5: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
0: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
3: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
5: कुछ न कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
6: कितने चाय?
5: यही चार पांच, और चार पांच प्लेट बढ़ेगी।
6: और पैसे?
4: ये ले, मैं देता हूँ।
3: अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता।
0: ऐसा नहीं हो सकता।
4: एक ही बात है भैया, एक ही बात है। एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
3: नहीं, नहीं, नहीं,
0: चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
4: ले ले, चलो, चलो। ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
5: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको कर्माकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
4: मगर वो क्या कर सकता है?
0: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाई?
3: सही बात,
0: सही, सही, सही है ना?
5: सही बात, सही बात। सही।
4: अच्छा तो फिर पहले मैं करमारकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
5: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमारकर साहब के लिए।
4: हाँ, सो तो है,
3: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
5: बिल्कुल सही बात,
4: बिल्कुल सही बात।
5: आज ही मिल लीजिए,
4: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
5: बिल्कुल ही, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचिए उसके पास। क्यों भाई?
4: बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, मैं आज ही करमारकर साहब से मिल लेता हूँ।
7: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमारकर साहब के पास।
8: मे आई कम इन सर?
9: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया
4: सर? आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
9: हाँ हाँ, बोलो
4: सर। वो बात ये थी कि
10: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब,
5: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
9: हाँ याद है,
5: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
9: याद है, बरोबर।
5: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
9: बरोबर।
5: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
9: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
5: आपको सब कुछ याद है?
9: Of course.
5: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
9: बोलो बोलो, क्या काम है?
5: सर आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
9: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
5: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
9: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
5: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
9: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
5: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर
9: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
5: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
9: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
5: ये आप क्या पूछ रहे हैं सर?
9: क्यों?
5: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
9: ओ आई सी।
5: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर?
9: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
5: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
9: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी

0: वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड।
0: अच्छा, कभी देखा नहीं।
1: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल वो जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में।
0: ओ आई सी।
1: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर।
0: कहाँ?
1: वो घर के आंगन में सर।
0: लोधी रोड के क्वार्टर में?
1: नो सर, पुरानी दिल्ली में।
0: ओ, वो तो 10-12 मील होगा।
1: यस सर।
0: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
1: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी।
0: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
1: सर है तो दिल्ली ना।
0: यस, यू आर राइट।
1: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर। बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए।
0: हम रुकवा सकते हैं?
1: यस सर, आप रुकवा सकते हैं।
0: ओके, हम रुकवा देंगे।
1: थैंक यू सर।
0: नो, व्हाई थैंक मी? इट इज माय ड्यूटी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अब चलता हूँ।
0: ओके,
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा।
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए, ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए।
0: इज दैट ऑल?
1: यस सर।
0: ओके, हम लिख देंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सर।
0: अच्छा, बट लिसन।
1: यस सर।
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं।
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है, शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीज नहीं किया जा सकता।
0: हाँ हाँ, ये ठीक है।
1: थैंक यू सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: पर मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं। भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना।
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना।
0: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दें।
1: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर।
0: मिस्टर शर्मा।
1: यस सर।
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा।
1: वो तो सर।
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा। भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है। जैसे ऊपर कॉर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा।
1: ओके सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू सर,
0: ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू।
2: प्लास्टिक के घास। श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं। और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
2: जी।
3: तो

0: क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीजन से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहां रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी मणिरत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे, वीसीआर पे। पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना, ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी। और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की, फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी,
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म में, इंडस्ट्री में।
1: हाँ।
0: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ, और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था। शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था, तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहां अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, वहां से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक में भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहां से मेरी जर्नी, वहां फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा भी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे,
0: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब डी

0: डीवीडी हुआ करती थी, तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहां का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई। तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूं जो असिस्ट करना चाहता हूं, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया है मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर हाँ, जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया।
0: हाँ,
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
1: जी,
0: जो बड़े डायरेक्टर है रेड वन रेड टू आमिर नो वन किल जैसिका के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि चार या पांच छह एडी होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा। ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
1: जी,
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि चार पांच एडी सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम में कंटिन्यूटी लिखता था
1: जी,
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
1: जी।
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भाई आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर एनएसडी एफटीआई या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो उनको, अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है
1: जी। सुन लेते हैं।

0: गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा नाम आने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है। उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई, मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ

0: लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए, तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्की।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार, हाँ, हाँ, जैसा कह रहे थे,
0: हाँ,
1: ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम,
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो। लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हो
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो

0: भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है।
1: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं, उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहाँ अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: मैं
0: में
1: कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ? क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
0: हाँ।
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
1: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
1: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चले और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं, जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शियरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रांगर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं, तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखता है, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे, तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
1: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में, और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और इस तरह से आपको एक अंदाजा।
1: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया, तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं।
1: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
0: जी,
1: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, यहाँ बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए।

स्ट्रगल करने के लिए। इसलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूं, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन

0: जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहते हैं या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग हाँ। के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे
1: हाँ।
0: वो भी एक होता है, आपको कोई न कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है?
1: देखिए, जैसे आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलके प्ले होस्ट करें। कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें। 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं भी हो, वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोअर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं, तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं, उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं, वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू,
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है जी। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही।
1: हाँ, वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए,
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे
1: बढ़ाते हैं। ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता।
0: हाँ।
1: जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा, और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई 2-3 ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं, और
1: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। हाँ। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
0: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी, इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
1: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे

0: इन पे करिए वो। अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है, अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं। अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं,
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा किया?
0: आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के
0: अच्छी तरह लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक देवर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वॉज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमराज होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो, बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के, वो
0: बिना आए। दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
0: हाँ, वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहां जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या

0: ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: हूँ। बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उससे
0: नहीं,
1: बात
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ, वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी।
1: अच्छा।
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई। फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उसे कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे?
0: जिंदगी कैसी है बहेली।
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपना।

0: कभी तो हंसाए कभी ये बुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आज भी सारी बातें आपने हमसे की हैं। आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और

0: रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकी, सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम विवरण।

अब आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी प्रस्तुत करेंगे शाम 7 बजे। जयपुर से ही प्रसारित कार्यक्रम आप फिर से सुन पाएंगे शाम 7:30 से।

हमारे केंद्र से राजस्थानी लोक संगीत आपको सुनवाएंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे रेणुका माथुर और साथियों की आवाज में गाए चुनिंदा लोकगीत और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे रात 10 बजे से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केन्द्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको

सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर, यहीं से 6:10 पर होगी वंदना।

हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित किया जाएगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम के तिनी बाद सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और बातें का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। आइए आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाते हैं रेणुका माथुर और साथियों की आवाज में गाए चुनिंदा लोकगीत। सुनते हैं पहली प्रस्तुति।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफएम माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना एफएम माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर

0: में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: राजस्थानी लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ?
4: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे मीहा तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
8: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
7: और रियली क्या स्पेशल है इसमें?
8: देख छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
7: वाह मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
8: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC हर पल आपके साथ।
9: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अश्योर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
3: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
4: राजस्थानी लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से, और आज आप सुन रहे हैं रेणुका माथुर और साथियों की आवाज में गाए चुनिंदा लोकगीत। सुनते हैं अंतिम प्रस्तुति।

रेणुका माथुर और साथियों की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: तराने नए पुराने
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत परिणीता फिल्म से, जिसे गाया सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे इसके गीतकार हैं और शांतनु मोशा ने इसे संगीत दिया है।

0: हम सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में यह गीत, जिसके गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है जाने मन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से यह गीत। आशा भोसले, अशोक कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के हैं बोल और संगीत है आरडी वर्मन का।

आज कार्यक्रम तराने नए पुराने में हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा को भी। और चलिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म उमराव जान से। आशा भोसले की आवाज है, गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिवस, तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माई गई फिल्म सिलसिला का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है शिवहरी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब हम सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर यह कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि

0: उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रूपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम तराने नए पुराने में।

हम सुन रहे थे ये गीत घर फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आरडी वर्मन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में अगला गीत, जो कि है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज है, महबूब के हैं बोल।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने।

0: हम सुन रहे थे ये गीत का होना प्यार है फिल्म से लकी अली और राम्या की आवाजों में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम कोहली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में मिस्टर नटवर लाल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सामरिक साझेदारी और सहयोग पर जोर दिया। जयपुर में बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा कारणों से आज शाम तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। पुलिस की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर दोपहर तक पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द रहीं। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मंत्रालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और निर्धारित क्षेत्रों में सभा करने से जुड़े नियमों की सख्ती से पालना करवाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बदलते इस दौर में तकनीक, त्वरित निर्णय, आत्मनिर्भरता और सामरिक साझेदारी आवश्यक है। रक्षा मंत्री आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के अन्य घटनाक्रमों तथा उनके रणनीतिक प्रभाव पर नजर रख रहा है। वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है और उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ देश को दुनिया से अलग थलग करना नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के लिए घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज

0: जयपुर मेट्रो फेज 1C परियोजना के तहत टनल बोरिंग मशीन TBM का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू हो गया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण काम को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जयपुर मेट्रो फेज 1C आज शुरू हुआ है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फेज 2 का मेट्रो प्रतापपुरा से शुरू किया था। वो भी 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 42 मेट्रो स्टेशन के साथ को डिजाइन किया गया। आज ये जो बोरिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, टनल डिगिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। गलता टू बड़ी चौपड़ 3.5 किलोमीटर का ये लेंथ अगले 5-6 महीने में वर्क कंप्लीट होगा और फेज 1C के साथ साथ 1D

0: नेटवर्क कंप्लीट होगा और फेज वन सी के साथ साथ वन डी पे भी काफी काम आगे बढ़ रहा है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।
1: मुख्य सचिव ने आज ही जयपुर विकास प्राधिकरण में आयोजित सेवा सेतु शिविर का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की, साथ ही दीपावली से पहले की जाने वाली तैयारियों की भी राज्य स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दीपावली के मद्देनजर शहरों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करवाने तथा आवश्यक रखरखाव के कामों को प्राथमिकता से पूरा करवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव दिवाली से पहले अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों का भी रखरखाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारतीय रेलवे का बीते एक दशक में अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। इसे परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति के रूप में रेखांकित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: बीते 10-12 सालों में रेलवे के बजट, सुरक्षा, गति और यात्री सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में रेलवे का बजट 29,055 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों ने मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा का स्वरूप ही बदल दिया है। साथ ही मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14,000 से ज्यादा आरओबी और आरयूबी बनाए गए हैं। वहीं मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड संख्या में रेलवे के आधुनिक कोच और स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण हुआ है। बीते दशक में रेल दुर्घटनाओं में भी 90% तक कमी आई है। वहीं दोहरीकरण सहित 30,000 से 35,000 किलोमीटर नए ट्रैक जोड़े गए हैं। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। उन्होंने इस चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतने और बेहतर समन्वय के साथ काम करने की बात कही। श्री सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के जरिए करीब 1,55,000 पदों पर निर्वाचन होना है। इसे देखते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। श्री सिंह ने निर्वाचन संबंधी कामों के किसी भी तरह में बाधा नहीं हो, इसके लिए हर ग्राम पंचायत में जनरेटर और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। इस बीच आज पंचायत राज चुनाव में अभ्यर्थियों को आवेदन भरने और अन्य जानकारी देने के लिए प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला रखी गई। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई गई। लोक अदालत के लिए प्रदेश में 8,38,000 से अधिक प्रकरण सूचीबद्ध किए गए। इनमें आपसी सहमति और राजीनामे से मामलों का निस्तारण किया गया। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। वहीं जयपुर में न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने लोक अदालत के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इनमें राजीनामे के आधार पर फैसले होते हैं, जिससे लोगों के समय की बचत होती है।
3: सामाजिक सौहार्द को प्रगाढ़ बनाने का अनुपम मंच है। यहाँ किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। इस लोक अदालत को

0: की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को मानसिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा, साथ ही समय पर बीमारी की पहचान और उचित इलाज भी हो सकेगा। प्रदेश में 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य माह की शुरुआत हुई। इसका समापन आज मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान के साथ हुआ। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: मानसिक स्वास्थ्य माह के दौरान प्रदेश में शिक्षण संस्थानों और चिकित्सालयों में विशेष जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं रखी गई। इनमें मनोचिकित्सकों द्वारा विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, मोबाइल फोन की लत छोड़ने सहित अन्य विषयों पर सलाह दी गई। रोजाना योग, खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भ्रांतियों से बचने, लंबे समय तक उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेने को कहा गया। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हेल्पलाइंस की भी जानकारी दी गई। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेली मानस के जरिए लाखों लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने शारदीय नवरात्र की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने जगत जननी मां भगवती से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। शारदीय नवरात्र की कल से शुरुआत हो रही है। ये पर्व मां दुर्गा की आराधना को समर्पित है। देवी दुर्गा को शक्ति और साहस का प्रतिरूप माना जाता है और नवरात्रि के दौरान उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ कल पहले दिन शैलपुत्री रूप की उपासना की जाएगी। देवी मंदिरों में अगले 9 दिनों तक होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर सजावट सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर बाजारों में रौनक है। पूजन सामग्री, चुनरी, कलश और अन्य सजावटी सामान की खरीदारी की जा रही है। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पांडाल भी बनाए जा रहे हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इससे पहले आज पितृ अमावस्या पर विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया गया। लोगों ने जरूरतमंदों को दान पुण्य भी किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए मित्र देशों के साथ सामरिक साझेदारी और सहयोग पर जोर दिया। जयपुर में बड़ी चौपड़ से गलता गेट तक बनने वाले भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग खुदाई का काम शुरू। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजन रखे गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में हुआ। इसमें एनएचएम मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने चिकित्सा संस्थानों को मरीज केंद्रित सोच के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान

है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 31 जिला परिषद सीटों सहित पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में चुनावी हलचल से ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध करने और आचार संहिता की पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त निगरानी रखी जाए। जिले की 11 पंचायत समितियों की 448 पंचायत समिति के 179 वार्डो में चुनाव कराए जाएंगे। जिले के कुल 8,17,626 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अनुसार बालोतरा जिले में तीसरे चरण में 6 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। इनमें सिद्धरी, गिड़ा, कल्याणपुर, गुड़ामालानी, धोरी मन्ना और समदड़ी शामिल हैं। इस चरण में 86 केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं चौथे चरण में 5 पंचायत समितियों में होगा। सिवाना की ग्राम पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में कुल 182 ग्राम पंचायत

0: पंचायतों के 469 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिला 19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नव मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोई भी पात्र मतदाता ना छूटे अभियान के तहत 7 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूलों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए गए। स्थानीय बीएलओ और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब प्रभारियों के सहयोग से पात्र नव मतदाताओं से फॉर्म 6 भरवाकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। जिले में हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराते हुए सभी 7 निकायों में अपने बोर्ड बनाए हैं। बालोतरा नगर परिषद, सिवाना, जसोल, समदड़ी, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना और सिरधरी में भाजपा के बोर्ड बने हैं। बालोतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर हाल ही में अच्छी पहल की गई है। जिले में आमजन को बेहतर और जल्द आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले को 5 नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। इन नई एम्बुलेंस को पुरानी एम्बुलेंस के स्थान पर विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर उम्मेदा राम ने बताया कि इन नई एम्बुलेंस से जिले के ग्रामीण, दूरदराज और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर सुरक्षित और बेहतर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला जागरूकता और सुरक्षा संबंधी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में दीपावली पर्व पर अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने बालोतरा और सिरधरी क्षेत्र में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति होगी। जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बालूतरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशे को कहीं ना, खेलों को कहीं हां विषय पर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालूतरा जिले के 20 स्कूलों के 60 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्ति और खेलों के महत्व का संदेश दिया। जिले के गुड़ामालानी में पिछले दिनों बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। पश्चिम क्षेत्र में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित होने से किसानों को बाजरे की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी मिल रही है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नई दिल्ली में आए जंतर मंतर सामे विरोध प्रदर्शन में ध्यान रखता था कहीं हिफाजत रा जरूरी इंतजाम करी चिया। राष्ट्रीय राजधानी में आए रेल और मेट्रो सेवाओं माथे असर पड़ियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्धरी नवी चुनौतियां न ध्यान रखता थका दोस्त देशों सागे सामरिक साझेदारी और सहयोग माथे जोर तीनों। जयपुर माए बड़ी चौपड़ू गलता गेट ताई जमी हेटे बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर सारू खुदाई रो काम शुरू हुयो। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह पंचायत चुनाव जुड़ी सगली व्यवस्थावां टेम सर पूरी करण रा हुकम दीना। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। नई दिल्ली रा जंतर मंतर सामी आज सीजेपी कानून रखी जिया विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम न ध्यान रखता थका पुलिस ओरों हिफाजत रा खास इंतजाम करी जिया और कानून व्यवस्था बनाई रखन सारू मोटी तादाद माए पुलिस कर्मचारी तैनात करी जिया। हिफाजत रा लिहाज आज सिंजा ताई 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखी जिया। पुलिस कानून राजधानी रा न्यारा न्यारा हल्का माए आवन जावन री व्यवस्था माए बदलाव रे बारा माए राय दी रीची है। पुलिस जनताओं गैर जरूरी आवन जावन बचबारी अरज कीनी है। इविचे नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मथे दोपहर ताई पूगन वाली कई गाड़ियां नी चली। गृह मंत्रालय रे ओरु सगला राज्य और केंद्र

0: रा राज वाला प्रदेशा ने खत लिखर विरोध प्रदर्शन रा मकसद उन दिल्ली जावन वाला लोगा ने रोकन सारू एहतियाती जतन करन बाबत कही चियो है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नुआ जमाना री युद्ध चुनौतियां रो सामो करन सारू मित्र देशा बीच मदद बधावन माथे जोर तीनो है। वे आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे राखी जिया तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कार्यक्रम माई बोल रहा है। वे कहो कि नुआ जमाना रा युद्ध लड़बा माई तकनीक तुरंत फैसला खुदरापान उबोहेवन और सामरिक भागीदारी जरूरी है। श्री सिंह कहो कि दुनिया री सुरक्षा व्यवस्था माई फेरिया मोटा बदलाव बीच भारत पड़ोसी देशा और दुनिया भर रा न्यारा न्यारा वाकया अरमाना रणनीतिक असर माथे निजर राख रियो है। वायुसेना स्टेशन माथे राखी जो हवाई प्रदर्शन देखिया पाछे रक्षा मंत्री कहो कि दुनिया माए व्यवस्था तेजियों बदल रही है जदके उभरती वैश्विक व्यवस्था रो रूप अनिश्चित बनियोडो है। श्री सिंह कहो कि खुदरापान उबा भारत रो मतलब देश ने दुनिया अलग थलग करनो नहीं है बल्कि इनमाए खास प्रौद्योगिकी रा डिजाइन विकास निर्माण और रख रखाव सारू देश रोबूतो बधावनो शामिल है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर मेट्रो रा फेज वन सी रा तेत टनल बोरिंग मशीन TBM काम री शुरुआत कीनी। इस आगे बड़ी चौपड़ गलता गेट ताई जमी हेठे बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर री सुरंग खुदाई रो काम शुरू हो गयो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्य सचिव कहो कि ओ काम साल 2027 ताई पूरो करनो तय करी चियो है।
1: जयपुर मेट्रो फेज वन सी आज शुरू हुआ है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फेज टू का मेट्रो प्रतापपुरा से शुरू किया था। वो भी 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 42 मेट्रो स्टेशन के साथ को डिजाइन किया गया। आज ये जो बोरिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, टनल डिगिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। गलता टू बड़ी चौपट 3.5 किलोमीटर का ये लेंथ अगले 5-6 महीने में वर्क कंप्लीट होगा और फेज वन सी के साथ साथ 1B पे भी काफी काम आगे बढ़ रहा है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।
0: मुख्य सचिव आज जयपुर विकास प्राधिकरण में राखी जिया सेवा सेतु शिविर रोई दौरो किन्नो। वे प्रदेश रा सगड़ा नगरी निकायों री आवता 100 दिन री कार्य योजना रो जायजो लिन्नो। मुख्य सचिव दिवाली जुड़ी तैयारियां बारा माई राज्य स्तरीय मीटिंग लेर अहलकारा ने साफ सफाई रा अभियान चलावन जनता री आवन जावन रे ठोणा ने साफ सफाई करावन और जरूरी रख रखाव रा कामा माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। भारतीय रेल री लारला 10 बरस माए काया पलट वेगी। इन आवन जावन और बुनियादी ढांचा हलका माए ऐतिहासिक क्रांति रा तौरु देखियो जा रियो है। पेश है एक रपट।
2: बीते 10-12 सालों में रेलवे के बजट, सुरक्षा, गति और यात्री सुविधाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2013-14 में रेलवे का बजट 29,055 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर 2,78,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों ने मध्यम और लंबी दूरी की यात्रा का स्वरूप ही बदल दिया है। साथ ही मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14,000 से ज्यादा ROB और RUB बनाए गए हैं। वहीं मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड संख्या में रेलवे के आधुनिक कोच और स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण हुआ है। बीते दशक में रेल दुर्घटनाओं में भी 90% तक कमी आई है। वहीं दोहरीकरण सहित 30,000 से 35,000 किलोमीटर नए ट्रैक जोड़े गए हैं। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य रा चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह आवता दिना फेवन वाला पंचायत चुनाव री व्यवस्था रा बारा माए आज जिला निर्वाचन अधिकारियां सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए मीटिंग कीनी। वे कहो कि पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव माए करीब 1,55,000 ओहदा माथा निर्वाचन हुएला। राजेश्वर सिंह कहो कि इन ध्यान राखता थका जरूरी तैयारियां टेम सर पूरी करी जावनी चाहिए ताकि शांति सागे स्वतंत्र निपक्ष और साफ चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जा सके। चुनाव आयुक्त चुनाव जुड़िया कामा माए किनी भांतरी अड़चन

0: बचा अवसारो हर ग्राम पंचायत माए जनरेटर और बिजली री व्यवस्था तय करन रा हुकम दीना। ई बीच पंचायती राज चुनाव माए अर्जी देवण जुड़ी और दूजी जानकारियां देवण सारू आज प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला राखी छी। ई साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगाई छी। इनमाए आखा राज्य माए 8,38,000 बत्ता मामला मा थ सुनवाई करी छी। लोक अदालत माए रजामंदी मामला निपटाई छिया। जोधपुर माए राजस्थान हाईकोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल लोक अदालत रो उद्घाटन कीनो। जयपुर माए न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल लोक अदालत रा उद्घाटन जलसा माए कहो के आ अदालत माए राजीनामा फैसला भेवणो पक्षकारा रा टेम री बचत फै है।
1: सामाजिक सौहार्द को प्रगाढ़ बनाने का अनुपम मंच है। यहाँ किसी की हार या जीत नहीं होती बल्कि आपसी सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। इस लोक अदालत को पूर्णतः साथी बनाने के लिए लंबित मामलों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया है। जन सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई की जा रही है।
0: आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके जनता माए मानसिक स्वास्थ्य जुड़ी जाग जगावन सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। प्रदेश माए 10 सितंबर मानसिक स्वास्थ्य महीनो शुरू करी चियो हो। ओ महीनो आज मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फेंक्यो। मानसिक स्वास्थ्य महीना रे दौरान प्रदेश रा स्कूल कॉलेज और अस्पताल माए खास जागरूकता सत्र और कार्यशाला में राखी ची। आमाए मनोचिकित्सक विद्यार्थियों ने तनाव प्रबंधन और मोबाइल फोन री लत छोड़बा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मत राय दीनी। रोजीना योग खेलकूद और सकारात्मक सोच काम लेवण मत जोर दियो चियो। ईसा गई गलत फहमिया ऊं बचवा और लंबा बगत ताई उदासी थकान चिड़चिड़ापन रे सूरत माए जानकारों राय लेवन सारू कही चियो। ध्यान जोग है कि देश रा 36 राज्यों और केंद्र रा राजवाड़ा प्रदेशों माए टेली मानस रे जरिए लाखां लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य जुड़िया इलाज राय दी जा रही है। काल नौरता शुरू हैला दुर्गा माता री पूजा ने समर्पित ई पर्व रे दौरान मारा नौ रूपां री पूजा करी जावे है। देवी दुर्गा ने ताकत और हिम्मत रो रूप मान्यो जावे है। घट स्थापना सागे काल पहला दिन शैल पुत्री रूप री पूजा करी जावेला। देवी मिंद्रा माए आवता नौ दिन ताई भेवन वाला न्यारा न्यारा धार्मिक आयोजन न ध्यान रखता थका सजावट समेत जरूरी तैयारियां पूरी करी जा रही है। नौरता माए मां दुर्गा री मूरत बिठावन सारू पंडाल बनाया जा रहा है और पूजन सामग्री चुनरी कलश और दूजी सामग्री री खरीददारी करी जा रही है। नौरता माए गरबा और डांडिया रा आयोजन नी राख्या जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े जनता ने शारदीय नवरात्र री शुभकामना दीनी है। मारा संदेश माए श्री बागड़े जगत जननी मां भगवती सगला री जिंदगी माए सुख शांति और बरकत री कामना कीनी। इनो पहले आज पितना री अमावस रे मौके विधि विधान श्राद्ध तर्पण और पिंड दान करी जिया और जरूरतमंद लोगों ने दान दिया जिया। उत्तर भारत री नामी शक्तिपीठ कैला देवी रो शारदीय नवरात्र मेलो ही काल शुरू फैला। 20 अक्टूबर तक चलन वाला ई मेला माए मोटी तादाद माए जातरुआ री आमद रफ्त न ध्यान रखता थका जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा आज मंदिर हलका माए हिफाजत और दूजी व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। बाड़मेर जिला माए वीरात्रा री वांकल माता रामिंदर माए काल नौरता रो मेलो भरेला। प्रदेश रा बीकानेर और जयपुर संभाग समेत 5 जिला माए आज हल्की बारिश और छांटा छिड़का रा आसार है। इनो चूरू सीकर और आरएसआर रा हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरण री संभावना है। काली एड़ोई मौसम रेवण रा आसार है। ई बीच राज्य माए पारो उतरण लाग्यो है। लाडली रात 11 शहरा माए कम ते कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करी जियो। आबू राज माए रात्रि भगत तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस नापी जियो। बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का माए 13 और 14 अक्टूबर नई कठे कठे जोरदार बायरो बाजन सागे हल्की बरसात वह सके है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। नई दिल्ली माए जंतर मंतर सामी

0: विरोध प्रदर्शन न ध्यान रखता था कहा हिफाजत रा जरूरी इंतजाम करीचिया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाओं माथे असर पड़ियो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युद्ध री नई चुनौतियां न ध्यान रखता थका दोस्त देशों सागे सामरिक साझेदारी और सहयोग माथे जोर दिनो। जयपुर माए बड़ी चौपड़ू गलता गेट ताई जमी हेटे बनाया जावन वाला मेट्रो कॉरिडोर सारू खुदाई रो काम शुरू थियो। और राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह पंचायत चुनाव जुड़ी सगली व्यवस्थावां टेम सर पूरी करन रा हुकम दीना। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम के बाट उड़ीकता सगड़ा किसान साथिया ने अभिलाषा पारी की ओरसू घनी घनी राम राम सा। और राजू भाई आपने भी मारी ओरसू घनी घनी राम राम सा।
7: राम राम अभिलाषा बहन और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगड़ा किसान भाई बहन ने राजू राम राम सा।
6: तो देखो सर, राम राम के सागे सागे आप बात करा कि अबार को जो यो समय चल रहे छे, यो भी अपनी खेती किसानी में बहुत ही महत्वपूर्ण समय छे।
7: बिल्कुल सर,
6: क्योंकि देखो अब कटे कटे तो फसला की कटाई होबा वाली छे, कटे कटे नई नई फसला की बिजाई होबा वाली छे। तो अपना जो किसान साथी है, यही सब कामा की यदि तैयारी कर ले, यही कामा सुचारू रूप से यदि करता जावे, तो बाकी जो खेती बाड़ी है वो वन मुनाफो देली। जैसा कि देखो सर, जहाँ जटे जटे फसला कटवा को समय छे, बटे बटे सबसे पहली आपा भंडारण की जो व्यवस्था है विनय उचित बना लेवा, और विनय नीका तरीका से करवा की योजना बना लेवा। कि देखो सर, जो भंडारण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है खेती किसानी को, खेती बाड़ी के पाछे। कि जब अपनी फसल पकड़ तैयार हो जाओ छे, तो उनकी सार संभाल और उनको जो भंडारण व्यवस्था है वो अपन ने किन तरीका की रखनी छे। तो देखो साहब, भंडारण की जब आप बात करा तो सबसे पहले यही चीज देख लेना, जो भी अपनो भंडार गृह है सफाई का तरी पोछो लगार, चाहे मेरे की जो खिड़कियां दरवाजा है वाने खोल देवा, 2-3 दिन वाने खुल्लो ही रहवा देवा, ताकि ताजा हवा बाहर निकल सके और माई की जो नमी है वह खत्म हो सके। इसके बाद से ध्यान रखा कि आपने जो भी भंडार करवा के तानी, जो भी बोरियां अपन ने काम में ले रहा छा, वहां बोरियां की साफ सफाई को भी अपन ने विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करा कि नई बोरियां काम में लेवा, यदि नई बोरियां काम में नहीं ले रहा हो तो पुरानी बोरियां ने भी निकतरी कीटनाशक का गुण में डुबो, निकतरी धूप में सुखार, क्योंकि देखो अबार तो धूप भी राजू भाई बहुत बढ़िया पड़ रही है।
7: और देखो क्या धूप में सुखार, तो धूप में अपन बोरियां नहीं, बल्कि अपना जो फसल का जो

0: साधन है। बिन भी अपन देखो धूप में सुकार नमी कम मात्रा में करके फिर दी के बाद अपन या तो अगर बेचनो है तो आप बाजार में भी ले जावा साफ सुथरो करके बढ़िया तरह से ग्रेडिंग कर सका आप तो अपन बढ़िया जी को भाव मिल जाओ या आप स्टोर करा तो बिन नमी कम से कम कर उचित जो मात्रा है नमी की भी तक लिया और बिना आप भंडारित करा तो अपनी जो फसल उत्पादन है वो खराब हुआ सो बजासी और आपन नुकसान नहीं हो सी। और देखो इसके साथ ही आप देखो बाहर को जो टेम है आगे चुना गेहूं है बाकी भी कृषि तो अखबार देखो सरसों को बिजाई को टाइम चल रहा है तो आपने देखो फसल है दिन भी संरक्षित कर रहे हैं जुताई कर रहे हैं अगर पानी की कमी है तो दिगमान नमी है तो अगर आप दिगमान प्रयोग भी कर रहे हैं खाद की व्यवस्था भी कर रहे हैं तो बीज भी अपन सोच समझ रही ले अपनी जो मिट्टी है पानी है देखा मेलजोल का हिसाब मिट्टी पानी की जांच की सिफारिश के अनुसार अपन खाद प्रयोग में लेना है और बीज भी के अनुसार ही प्रयोग में लेना है। साथ ही साथ जो अपना वेरायटी है जो किस्म ले से बीज की बिको अपन चयन सोच समझ करना चाहिए ताकि अपना जो को जलवायु है मौसम है बी के अनुसार और सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार आप बीज लेवा और बीज को प्रमाणित अपन बिल है जो भी लेवा ताकि अपन एक सोहबाव जो जोखिम है जिसमें आप बच सका।
1: जी सर, तो देखो सर या तो बात हुई एक जानकारी की अब कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी और है राजू भाई।
0: बिल्कुल सर,
1: तो कार्यक्रम में ले चला हूँ जानकारी की ओर
0: और कहीं।
1: तो देखो सर अपने साथ अपना विशेषज्ञ है
0: डॉक्टर अशोक शर्मा जी प्रोफेसर कीट विज्ञान कीटनाशी रसायन का अवशेष और बांका दुष्परिणाम के बारे में अपन जानकारी दे सी तो मिलर ले जानकारी।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी पूर्व विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर एवं पूर्व निर्देशक शिक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से पधारे हैं। डॉक्टर साहब को नमस्कार। आज डॉक्टर अशोक शर्मा जी कीटनाशी रसायनों के अवशेष और उसके दुष्परिणामों के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि कीटनाशी रसायनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके अधिक उपयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं ये किसान भाइयों को जानकारी दें।
2: देखिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज के समय में कीटनाशियों का उपयोग बहुत आवश्यक हो गया है पर इसके साथ साथ अगर इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए तो उससे भूमि हमारी जमीन हमारा पानी जल वायु और हमारे आहार या खाने में इसका प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके साथ साथ एक और परेशानी हो सकती है कि हमारा जो प्रकृति में जैविक संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है।
1: जी जी जी।
2: अब अगर हम 2005 वर्ष की बात करें तो उस समय करीब 90,000 टन कीटनाशकों का उपयोग हुआ करता था
1: जी।
2: जो अब 3,00,000 टन से भी ज्यादा हो गया है और इसकी अगर कीमत की बात देखी जाए तो ये अब करीब 9,950,000 करोड़ रुपए मूल्य के कीटनाशी जो है वो बाजार में इस समय खरीदे और बेचे जा रहे हैं द्वारा जो खरीद हो रही है उसका मूल्य जो है वो करीब 9,000 करोड़ या 9,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है।
1: इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने बताया कि कीटनाशी रसायनों का उपयोग लगातार आज बढ़ता जा रहा है और इनके अंधाधुंध प्रयोग से आज हमारा संतुलित जो फसल उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी के साथ आप ये भी बताएं कि कीटनाशियों के छिड़काव और बुरकाव के बाद क्या फसलों पर इनके अवशेष रह जाते हैं।
2: देखिए जब भी हम कीटनाशियों का उपयोग करेंगे फसलों पर चाहे वो सब्जी की हो चाहे वो फल की हो या और अन्य फसलें हो तो उनमें उनके अवशेष या उनका कुछ मात्रा जो है उस पर रह जाना एक स्वाभाविक एक आम बात है परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अवशेष जो बचेंगे फसलों के ऊपर वो एक इतनी सीमा में होने चाहिए कि जिससे खाने वाले के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े किसी तरह का कोई उसके खाने वाले को उसका नुकसान ना हो।
1: जी जी।
2: तो इसके लिए जो है एक सीमा निर्धारित की हुई है वैज्ञानिक तौर पर एक सीमा निर्धारित की है जिसे कि हम कहते हैं सहनशीलता सीमा या निरापद सीमा।
1: जी जी।
2: जिसको हम बड़े साधारण अगर भाषा में हम देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो विषैले पदार्थ है क्योंकि सारे जितने रासायनिक कीटनाशी हैं वो विषैले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं तो उनकी वह ज्यादा से ज्यादा क्या मात्रा रहे जो कि खाद्य सामग्री में एक निश्चित समय के बाद जो है वो हम रहने की उसको परमिशन दे सकते हैं उसको छोड़ सकते हैं कि इतने समय के बाद जो है ये खाने वाले पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव नहीं डालेगी।

0: जी सर, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कीटनाशकों के प्रयोग के बाद जो फसल पर इसके अवशेष रह जाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इनके एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताएं कि क्या जमीन या मृदा या उस पर उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उन पर भी इन कीटनाशकों का अवशेष रह जाते हैं?
1: हाँ देखिए, ऐसा जब भी हम कीटनाशी छिड़केंगे तो वो उसका कुछ भाग जो है वो जमीन पर भी गिरेगा।
0: जी जी,
1: जब भी छिड़काव होगा कुछ पत्तियों पे गिरेगा, तो ये स्वाभाविक है कि उसके कुछ अवशेष जो हैं वो दोनों जगह रहेंगे और खास तौर से जमीन में जो है वो एक से डेढ़ वर्ष तक रह सकते हैं, और इसीलिए जो है एक से डेढ़ या दो वर्ष तक भी रह सकते हैं। इसलिए क्या किया कि जो बीएचसी हम किया करते थे, छिड़काव करते थे बहुत पहले, उसको जो है फिर सरकार ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसके करने से क्या है, उसके छिड़काव और उसके जमीन में देने से ये नुकसान होने लगा था कि जो अंदर जो हमारे छह जो कीट थे, अच्छी की जो बीमारी वाले जीवाणु थे, वो उनको नुकसान होने लगा था। इसलिए क्या किया कि फिर सरकार ने इसका जो है वो इसका उपयोग जो है धीरे धीरे कम करके अब तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। अब अगर हम ऐसी भूमि में अगर ले मान लो लेते तो जो अगर हम आलू की बात करें, शकरकंदी की बात करें, शलजम है, ये सारी जमीन के अंदर ही की वो रहती है, तो उसमें जो है इसके अवशेष पहुंच जाएंगे जो हमें पूरी तरह से पता भी नहीं लगेगा कि कितना वो जा चुका है, और वो जो है हम खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फिर क्या है कि भारत सरकार ने ऐसे कीटनाशी जिनके अवशेष बहुत लंबे समय तक रहते थे उनको रोक दिया कि भाई इनका तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और रोकने का कारण जो था वो ये था कि जो है किसी भी तरह से जो है हमारे खाने वाले को नुकसान ना पहुंचे। साथ में क्या था कि जो जमीन में जो कीट पाए जाते हैं, कई बड़े वैसे भी हैं जो उसके लिए उपयोगी होते हैं, वो जो है वो मर सकते हैं, इसलिए जो है इसको जो है रोकना पड़ा था।
0: जी सर, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि फसलों पर छिड़के गए जो कीटनाशक रसायन है उनका कुछ अंश फल, सब्जियों और अनाज में भी रह जाता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप हमें ये भी बताएं कि कीटनाशकों के छिड़काव के बाद फसलों की कटाई या तुड़ाई कब की जाए ताकि इनके अवशेष मानव शरीर में कम से कम पहुंच पाए और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव कम से कम पड़े।
1: देखिए, जो विश्वविद्यालयों में या सरकारी जो विभाग हैं कृषि विभाग, उनमें जो अनुसंधान हुए हैं वो हमें ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि जो है कब जो है वो फसल को तोड़ना है, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो जो है आपके फल की हो, ताकि जो जब वो काम में ली जाए तो उसमें जो है उसके अवशेष कम से कम हो और मानव शरीर को कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए जो है एक प्रतीक्षा काल। अब प्रतीक्षा का मतलब है कि कुछ देर हमें रुकना है। अब जब हमने छिड़काव कर दिया या जमीन में हमने किसी को मिलाया है या दिया है जमीन के अंदर, तो उसके बाद जो है हमें कितना समय जो है उस फसल को तोड़ना नहीं है, उसका पीछे कारण यह है कि जितनी एक समय सीमा निर्धारित कर दी है वो जो कि अलग अलग फसलों के लिए और अलग अलग कीटनाशकों के लिए अलग अलग है, तो वो प्रतीक्षा काल है कि इतने समय बाद अगर आप तोड़ेंगे तो मानव शरीर पर जो है उसके खाने वाले पर जो है उसका प्रभाव काफी कम हो चुका होगा। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर हमने जो है भिंडी की फसल ली है या टमाटर की फसल ली हुई है और उसमें अगर हमने थायोमिथ्रिन का जो है वो छिड़काव किया हुआ है तो तुड़ाई जो है वो एक दिन के बाद करनी है। इसी तरह से जो है अगर हमने बैंगन का है और तुरई है या गोभी की है और यही कीटनाशी अगर हमने छिड़काव किया हुआ है तो उसका हमें समय सीमा जो है 7 दिन रोकनी है फसल को, 7 दिन के बाद तुड़ाई करनी है। अब अगर हमने तुरई की या गोभी की ली है फसल और भिंडी की भी ली हुई है या जो है प्याज की ली हुई है तो हमें 4 से 6 दिन का उसमें अंतराल रखना पड़ेगा।
0: जी जी,
1: अगर हम खीरा आजकल बहुत जो है बाजार में बहुत अच्छे खीरा जो है वो आ रहे हैं और खीरे में जो है वो अगर इमिडाक्लोरोपिड नामक रसायन अगर छिड़का हुआ है तो उसका जो है हमें 3 दिन के बाद हमने उसका वो लेना है, तो उसके बाद छिड़काव के बाद, और वो भी खास तौर से जो दूसरा छिड़काव उसके 3 दिन के बाद हमने फसल को मार्केट में लाना है या अपने खाने के उपयोग में लेनी है। इसी तरह से फूल गोभी है, उसमें भी अगर इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव किया तो वो उसके लिए भी हमें 3 दिन रुकना पड़ेगा तुड़ाई के लिए, और टमाटर में अगर एसीफेट का अगर हमने कीटनाशक रसायन का वो किया हुआ है तो हमें उसके लिए भी 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, परंतु टमाटर में अगर इमिडाक्लोरोपिड दिया हुआ है तो हमें 2 दिन का इंतजार करके फसल तोड़ेंगे, तो हमारे उस पर जो है खाने वाले पर उसका बहुत ही कम प्रभाव।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और आपने बताया।

0: कि कीटनाशियों के छिड़काव के बाद फसलों की कटाई और तुराई कब की जाए, उसका प्रतीक्षा काल कितना होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज का जो विषय है ये हमें लग रहा है कि किसान भाइयों का ही विषय नहीं है, क्योंकि इस पर मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताओ कि ये जो कीटनाशी है इनके जहर से मानव शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिससे हम जान सके कि ये कीटनाशियों का जहर है।
1: देखिए, कीटनाशकों के जहर के बड़े चौंकाने वाले परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें और जहां पर कि अध्ययन किया गया है या सर्वेक्षण किया गया है, तो इससे क्या होता है कि जो ये जो जहर है इनसे जो है जीव मिचलाना हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, थकान हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा में जो है खुजली हो सकती है। ऐसी शिकायतें जो है आम तौर से किसानों ने की हैं। और कभी कभी जो है इससे हृदय रोग या श्वास रोग जैसी जो है या कैंसर जैसी या त्वचा की और जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। इसलिए जो है इसका उपयोग जो है बड़े अच्छे तरीके से जो सुझाए गए तरीके हैं उनके हिसाब से उसी मात्रा में ही करना है जो कि वैज्ञानिकों ने निर्धारित की हुई है। अंधाधुंध ओढ़ नहीं करनी है। हमारा पड़ोसी किसान क्या कर रहा है उसको देख करके हम बेवजह ही जो है अब कीटनाशकों का रसायन शुरू कर दें, अन्यथा जो है ये दिक्कतें जो अभी हमने देखी हैं ये दिखाई पड़ सकती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कीटनाशियों के जहर से मानव शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ हमें ये भी बताएं कि ये जो अवशेष और दुष्परिणाम हो रहे हैं हमारे मानव स्वास्थ्य पर, उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें ताकि मानव स्वास्थ्य पर असर इसका कम से कम हो।
1: देखिए, सबसे पहले जो खास बात है वो ये कीटनाशियों का अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग जो है वो कम ना हो। दूसरी बात यह है कि जो अनुमोदित कीटनाशी हैं उन्हीं का ही उपयोग किया जाए, यानी जो कि जो विभाग ने या कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ से जो सिफारिशें जिन कीटनाशियों की है उन्हीं का उपयोग होना चाहिए। और अंतिम जो छिड़काव होता है, क्योंकि कई फसलों में दो या तीन छिड़कावों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय जो है उनकी एक निश्चित प्रतीक्षा काल जो सीमा है वो कोई कितने दिन तक हमें उसको रोक करके रखना है उसका कठोरता से पालन होना चाहिए, खासतौर से सब्जियों के मामले में, क्योंकि सब्जियां जो है वो जल्दी बाजार में आ जाती हैं, किसान जो है वो जल्दी ला करके अपना पैसा कमाना चाहता है, तो इसलिए उसका जो प्रतीक्षा काल है उसका खासतौर से कड़ाई से पालन होना चाहिए। और जब सब्जियां अगर घर में हम खरीद के ले आए हैं घर में काम लेने के लिए, तो उन्हें जो है स्वच्छ पानी से अच्छे पानी से धो लें या गुनगुने पानी से अच्छे से दो तीन बार जो है इसको धो लें ताकि अगर कोई अवशेष उस पर छूट गए हों तो वो जो साफ हो जाए।
0: तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रही हूँ कि घर में अगर अपन सब्जियां लाते हैं तो उनको धो करके ही काम में लेना चाहिए ताकि उनसे जो कीटनाशी रसायन है वो निकल जाए,
1: जो बचा खुचा भी हो।
0: जी जी।
1: और जो अगर खास तौर से जो सलाद में उपयोग आने वाले हैं, जैसे खीरे की बात हम कर रहे थे, तो इनमें जो है ये होना चाहिए कि जो सुरक्षित कीटनाशी है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसी कीटनाशी आजकल बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है और जिनकी सिफारिश भी की गई है। और अब ये जो है क्योंकि कीटनाशियों से हमने देखा है कि पर्यावरण पर नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जो है हम और भी दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, इनसे अगर हम बचें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ मित्र कीट भी निकाले गए हैं, कुछ ऐसे जीवाणु भी निकाल लिए हैं जिनसे कि कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है और कीटनाशक रसायनों का उपयोग जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि समन्वित कीट प्रबंधन जो है उस वो विधि अपनाकर भी जो है हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। वैसे इन सब कार्यों के लिए जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है प्रदेश के सभी प्रदेशों के, विशेष तौर से राजस्थान प्रदेश के जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वो इन कीटनाशकों के अवशेषों के बारे में काफी चिंतित हैं और इनके बारे में जो है आगे और अनुसंधान चल रहे हैं जिनके कि हमारे किसान भाइयों को आगे निकट भविष्य में बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपने बताया कि कीटनाशक रसायनों के अवशेष क्या है, इसके बहुत सारे कारण बताएं, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके बचाव के लिए किसान और उपभोक्ता कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज की यह वार्ता किसानों को सुरक्षित और जिम्मेदार कीटनाशक उपयोगों के लिए प्रेरित करेगी और हमारे आम नागरिकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक बताएगी। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपसे

0: कहना चाहूंगी कि ये जो कीटनाशी रसायनों के अवशेष और उसके दुष्परिणाम आज हमारे समाज पर हो रहे हैं, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है, और जब फसलों के ऊपर अगर कोई कीटों के अगर हमें वो दिखाई पड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम दूसरे साधन को ना अपना करके कीटनाशकों के उपयोग पर आते हैं। पर इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि जो जिन भी फसलों पर, चाहे वो सब्जी की हो, खासतौर से विशेष तौर से सब्जी की मैं बात करूंगा, क्योंकि वो मार्केट में जो है बाजार में जल्दी आ जाती है, तो उसके लिए जो है जो अनुमोदित जो सिफारिश किए हुए जो हमारे कीट रसायन है उन्हीं का उपयोग करें, और वो भी जब करें जबकि बहुत आवश्यक हो। पहले हो सकता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर कीटनाशकों पे आना है तो जिस सिफारिश की गई है उन्हीं कीटनाशकों उन्हीं मात्राओं में और उतने समय काल को रोका जाए, उसके बाद तुड़ाई की जाए, ताकि जो है उसके अवशेष जो है उसकी मात्रा जो है खाने में या सब्जी में या खाने वाले पदार्थों में कम से कम आए। और साथ में जो है, अब अगर हमने उसको खरीद लिया है, हमें ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कम से कम घर में आने के बाद उसे जो है साफ पानी से या थोड़े गुनगुने पानी से जरूर सब्जियों को और फलों को धोकर के ही बनाए या फल को काट करके खाने में काम मिले।
0: तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो अपन जो भी सब्जियां उपयोग में ले रहे हैं वो कैंसर का भी कारण है?
1: हाँ, कैंसर का कारण ऐसा अनुसंधान बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से अगर इसी मात्रा में अंधाधुंध उसका उपयोग होता रहा तो जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियां जो है वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रहेंगी।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी दी, आपने हमें बहुत चीजों के बारे में बताया, आपने बताया कि कीटनाशक जो रसायन का प्रयोग आजकल हो रहा है, क्योंकि जरूरी है कि हम इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि कीटों रोगों से बचाने के लिए हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन उचित और संतुलित उपयोग फसल उत्पादन में सहायक होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक और गलत तरीके से अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो अवशेष हैं वो हमारी फलों, हमारी सब्जियों, अनाज और खाद्य पदार्थों में नुकसान हो सकता है, और इससे हमारे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए आज एक चिंता का विषय है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आए, और हमारे किसान भाइयों, गृहिणियों और सभी श्रोताओं के लिए आपकी जो जानकारी है वो ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहां,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो राजू भाई, देखो जानकारी तो आप ले लिया।
6: बिल्कुल सर।
5: और देखो जानकारी खातिर आप अपने विशेषज्ञ ने भी दिया धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ आगे अब कार्यक्रम ने ले चलना मनोरंजन की ओर।
6: तुम
5: सुन ले भाई बढ़िया सुगीत।
6: बिल्कुल सर।

0: आदर राजूभाई गीत के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी ने देवा आठे ही विराम किसान भैया से लेगा आज्ञा चाला करा
1: राम राम, राम, राम, राम।
2: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
0: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: राजस्थान की धरती पर जहां इतिहास सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है, यही है अभानेरी। चांद बावड़ी की अद्भुत स्थापत्य कला, हर्षित माता मंदिर की आस्था और गांव की संस्कृति में रचे बसे रंग जो इस बार बनेंगे एक खूबसूरत उत्सव का हिस्सा।
5: इस 12 और 13 अक्टूबर को अभानेरी फेस्टिवल में देखिए नुक्कड़ कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक संध्या का अनोखा अनुभव। तो इस बार विरासत और संस्कृति के रंगों से जुड़ने के लिए पधारिए अभानेरी दौसा।
4: परिवार के साथ आइए, राजस्थान की लोक कला और परंपराओं को करीब से जानिए। राजस्थान पर्यटन विभाग का सादर आमंत्रण। संपर्क करें पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर।
6: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगला किसान भाई बहना ने राजू भाई को राम राम और अभिलाषा बहन थनवी राम राम सा
7: गणी गणी राम राम। राजू भाई आपने भी और कार्यक्रम सुन जाया सगला किसान साथिया ने भी मारी ओर सु राम राम सा।
6: और देखो बार अपना खेतीबाड़ी तो करे हाँ, अपना दाना सासर है बाको भी ध्यान दे, वो बहुत जरूरी है।
7: जरूरी है सर,
6: तो नहीं तो वे बीमार भी हो सके और बाको दूध उत्पादन जो वो कम हो सके। तो बी चीज ने आप ध्यान में रखता हुआ बाका खान पान को और मौसम में परिवर्तन का हिसाब से बन जो अपनो बांधवा की जगह है बी को भी ध्यान रखना चाहिए। दिन में तापमान कदी ज्यादा रहे और कदी कम रहे तो बी के मायने अपन बन छाया में बांधवा को प्रबंध करना चाहिए
7: जी।
6: और आप देखो इतना दिन बारिश को टाइम हो हरे चारो पूरी तरह बन उपलब्ध हो रहे और अब देखो एकदम हरे चारो उपलब्धता कम हो रही है, अपना का व्यवस्था नहीं है।

0: देना तो दूध उत्पादन में भी प्रभाव पड़े।
1: बिल्कुल
0: तो भी कर लिया देखो, एक तो आप आगे वाला टाइम के हिसाब में रिजको है या और कोई बरसी में है जई है बड़ा आप हरा चारा की खेत की तैयारी कर हरा चारा लगावा की आप तैयारी कर सका। भी कर रहा अपना देखो कोई हरी अवस्था में कटड़ो चारो है या साइलेज बनाएड़ो है या फिर अपना कन हरे चारो खड़ी फसल है कोई तो बिना आप कोरो हरे नहीं देवा हरे सूखो और जो दाना मिश्रण है भी को अपना जो नजदीकी पशु चिकित्सालय में डॉक्टर साहब बाकी राह ले और या आपनो जो को अनुभव है पशुपालन को भी के अनुसार अपन ने बराबर मात्रा में देना चाहिए ताकि अपना पशु स्वस्थ और निरोगी रहे और भी को जो को उत्पादन आप लेवा का उद्देश्य सुराख रखे तो वो भी आपनों पूरा हो जाए
1: जी। और देखो साहब अपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पशु का चारा ने बदल रहा

अवस्था पर यदि पानी का प्रयोग नहीं करते हैं तो फसल में उत्पादन घटता है, उस पर पौधे पर कुप्रभाव पड़ता है। तो विशेष रूप से जैसे बहुत सारी दलहनी फसलें होती है, ज्यादा जैसे शाखा पड़ने या फूल फली आने पर सिंचाई करते हैं, बहुत सारी इस तरह की है सब्जियों वाली कि हर एक जैसे गर्मियों में हम रेतीली जमीन में तो हर सप्ताह में पानी देने की सलाह देते हैं, बाकी 10-15 दिन के अंदर पानी देते हैं, और बरसात में यदि वर्षा होती है तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दियों में हर एक फसल में 10-15 भी है। विशेष रूप से जैसे गेहूं जैसी फसल है तो 20 से 25 दिन पर एक अवस्था होती है सीड्स जड़ जमने की, इस समय पानी अवश्य देना चाहिए, और उसके बाद में उसकी जो खिलने निकलने की अवस्था होती है 40-45 दिन पर, उस समय दूसरा पानी देना चाहिए। फिर उसमें गांठे बनने की अवस्था होती है 65 दिन में, उस समय देना चाहिए। बाली निकलने की है 85 से 90 दिन पर, उस समय करो, या उसके बाद में आपके जैसे दूधिया अवस्था है 100 से 110, या उसके डब कठोर होने की अवस्था है, दाना पकने की अवस्था है, वो 115 से 120 दिन की अवस्था पर हमें पानी देना चाहिए। लेकिन यदि किसी बहुत ही पानी कमी है, माने एक ही पानी है या दो पानी है, तो दो पानी में हमें एक तो उसकी दूधिया अवस्था और एक जो सीड जड़ जमने की अवस्था महत्वपूर्ण है, तो इसी प्रकार से यदि एक ही पानी देना है तो सीड जड़ जमने की अवस्था पर देना चाहिए। कीट व्याधि का कौन कौन से कीट व्याधि लगती है फसलों में, उन पर क्या लक्षण है, किस प्रकार नुकसान करते हैं, उनके क्या उपाय है, उसकी भी जानकारी हमारे प्रशिक्षणों में देते हैं, तो ये प्रशिक्षण का कृषि में काफी महत्व है। प्रशिक्षण कई प्रकार का होता है, जैसे प्रशिक्षण हम एक तो किसानों को देते हैं, दूसरा हमारे जो विस्तार कार्मिक हैं जो किसानों को जानकारी देते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। उनका प्रशिक्षण दो प्रकार का है, एक तो सेवा में जैसे ही कोई प्रवेश करता है तो उस समय उसको प्रशिक्षण देते हैं, एक सेवा के दौरान, इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, तो उसको पूरे किस प्रकार से कार्य करना है, उसकी महत्वपूर्ण जो नई तकनीक आई है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। दूसरा आता है एक परिचयात्मक, जिसको इंट्रोडक्टरी प्रशिक्षण भी बोलते हैं, तो इसमें भी हम किसानों को जो जानकारी देंगे हमारे विस्तार कार्य कार्मिक, उनको भी ये ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और जो भी आदान प्रदान जो हम करते हैं इनपुट्स है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तीसरा प्रशिक्षण एक आता है, जो नए कैंडिडेट आते हैं उनको फ्रेशर कोर्स देते हैं, एक रिफ्रेशर भी है, रीट्रेनर भी है। अब सेवा के दौरान भी कई प्रकार के जैसे हम करते हैं कि भाई और ये मेथड, इसकी विधियां क्या है, तो विधियों में ऐसा है कि कई बार जैसे हम एक तो करते हैं ग्रुप डिस्कशन, चर्चा करते हैं, वो भी एक तरह का प्रशिक्षण का विधि है। फिर सेमिनार करते हैं, लेक्चरों के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, सिंपोजियम आयोजित करते हैं, कार्यशालाओं का आयोजित करते हैं, और सिंडिकेट मेथड जो है सभा विधि, इसके माध्यम से भी प्रशिक्षण किसानों को देते हैं, पैनल विचार विमर्श है, संवाद के द्वारा भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, हमारे कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं, एक व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती है केस स्टडी, ये भी एक प्रशिक्षण की विधि है, और मस्तिष्क प्रवाद विधि जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, इसके द्वारा भी छोटे छोटे समूह में बनाकर कोई विषय देते हैं और उस पर अपने विचार देते हैं, वो भी करते हैं, और एक बस सेशन, यदि बड़ी संख्या में हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं तो उसको बस सेशन द्वारा छोटे छोटे समूह में बनाकर और एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के उस पर देते हैं, तो इसके द्वारा भी हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। कई बार क्या होता है कि प्रशिक्षक जो ट्रेनर होता है वो प्रशिक्षणार्थियों के क्या ज्ञान की जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में ज्ञात नहीं होता, अपने प्रशिक्षण ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तुत नहीं करता, विषय जो सामग्री होती है उसका जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट नहीं होती, ये भी एक तरह की समस्या है। इसके अलावा और भी जैसे है कि उसको प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसके पास जो संसाधन है वो भी नहीं होते, प्रशिक्षण में प्रेरणा व प्रोत्साहन का भी अभाव पाया जाता है, इसके अलावा प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षण दोनों में कोई उत्साह नहीं होता, जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ना तो वो प्रशिक्षणार्थी को रुचि ले रहा है, वो भी जो प्रशिक्षक है वो भी सही तरीके से उनको प्रशिक्षण नहीं देता, ये भी एक तरह की समस्या है। प्रशिक्षणार्थियों की जो समूह रहता है उसमें आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असमानताएं रहती हैं, कम समय में अधिक सूचना देने के कारण कार्यभार बढ़ जाने की भी एक समस्या है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रक्रिया समय व क्रियाओं के अनुरूप नहीं हो पाती,
सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम माध्यम

अन्य संस्थाओं के सहयोग नहीं मिल पाना भी एक समस्या है। अब ये आता है कि प्रशिक्षण की जो है वर्तमान में कृषि विभाग कौन कौन से प्रशिक्षण आयोजित करा रहा है, तो कई प्रकार के कृषि उद्यान या उससे संबंध विभाग बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करते हैं जिनमें किसानों को तकनीकी जानकारी तो दी जाती है, उसके साथ साथ योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। अब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जैसे एक प्रशिक्षण आता है एक दिवसीय कृषक महिलाओं को एक प्रशिक्षण देते हैं जिसमें केवल महिलाएं होती हैं और उनकी आवश्यकता आधारित जो अद्यतन जो विषय होता है उस पर उनको एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर उनको जानकारी देते हैं। दूसरा कुछ इस प्रकार से है जो हमारी एक योजना है तिलहन की नेशनल मिशन इडेबल ऑल वाली, उसके अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं। उसमें कई तीन दिवसीय है और एक एक दिवसीय है, जो एक एक दिवसीय है वो ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाते हैं और जो तीन दिवसीय है वो जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसमें भी किसानों को जानकारी देते हैं उस योजना के अंतर्गत जिन फसलों की खेती की जाती है उनकी तकनीकी जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर भी प्रशिक्षण के सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक फार्मर फील्ड बेस्ड FFS जो IPM का प्रदर्शन है 14 सप्ताह का, उसके बारे में बहुत सारे विषय उसमें निर्धारित कर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। हर एक सप्ताह में एक दिन निश्चित कर 14 सप्ताह तक 14 दिन प्रशिक्षण देते हैं। किसान के खेत पर यदि विषय विशेषज्ञ जाते हैं उनसे भेंट वार्ता करते हैं तो वो भी एक तरह से जानकारी देने का तरीका है। समय समय पर हमारे यहाँ जो फार्मर फेयर या प्रदर्शनियाँ लगती हैं उन पर भी किसानों को जानकारी देते हैं, प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, उन प्रदर्शनों को किसान देखता है कि किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, वो भी हमारे एक प्रशिक्षण का ही भाग है। एक जिले के अंदर या राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में, यहाँ तक है कि विदेशों में भी किसानों का भ्रमण करवाते हैं, उन देशों में उन राज्यों में जो भी नई नई तकनीक हो रही है वो कृषि अनुसंधान केंद्र या कोई प्रगतिशील किसान के खेत पर नई तकनीक हो रही है उसको किसानों को दिखाया जाता है कि किस प्रकार करते हैं और वहां से देखकर किसान अपने खेत पर उसको अपनाता है। उद्यान विभाग में राष्ट्रीय बागवानी मिशन है या पार्ट ऑफ मोर कॉर्प योजना है जिसमें कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर है, इसको अपनाने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और MIDH की जो योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसमें संरक्षित खेती जिसमें ग्रीन हाउस है, सैंडनेट हाउस है, मल्च है, एंटीबर्ड नेट है, इनके माध्यम से किस प्रकार से बेमौसम में किस प्रकार से खेती करते हैं उसकी भी जानकारी एक तरह से प्रशिक्षणों में दिए जाते हैं। उद्यान विभाग के बहुत सारी योजनाएं औषधीय पौधों के बारे में भी प्रशिक्षण है, कुछ फल सब्जी फूलों की खेती के बारे में भी किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। हमारे जो विषय विशेषज्ञ है वो हमारे विस्तार कार्यकर्ताओं को मासिक कार्यशालाओं में या उनकी क्लस्टर मीटिंग होती है वहां भी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार वो एक तरह से जो प्रस्तुतिकरण है प्रशिक्षण को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का पावर प्रेजेंटेशन करते हैं। विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो विस्तार कार्मिक हैं जो किसानों से सीधा संपर्क रहते हैं उनको खेती की जानकारी देते हैं उनको भी प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षण के लिए कई तत्व हैं जो बहुत अति आवश्यक हैं। एक तो प्रशिक्षक, दूसरा प्रशिक्षणार्थी, एक दूसरा विषय वस्तु और उसका आसपास का परिवेश और अन्य सुविधाएं, ये बहुत आवश्यक हैं। ये यदि सुविधाएं जैसे हमारे प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो प्रशिक्षण ज्यादातर कृषि विभाग के प्रशिक्षण जो हमारे विस्तार कार्मिकों के किए जाते हैं वो राज्य कृषि प्रबंध संस्थाएं हैं दुर्गापुरम में, या इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है जिसको HITC बोलते हैं दुर्गापुरा में, वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रशिक्षण वहाँ आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा टोंक में भी एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र है, कोटा में हमारा इस राज्य कृषि प्रबंध संस्थान का प्रशिक्षण केंद्र है, जयपुर के बाहर कोटा और टोंक में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है उन कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। प्रगतिशील किसान के खेत पर भी जाकर दिखाते हैं, वहाँ भी एक तरह का प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रशिक्षण हैं और कृषि में ये जो प्रशिक्षण की महत्वता है इसका तो किसान भली भांति जानते हैं कि कितना महत्व है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही आज किसान उच्च पैमाने पर अच्छी

0: खेती कर रहे हैं जहां खेती संभव नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों में भी नई नई तकनीक अपनाकर खेती कर रहे हैं। कई जगह जैसे जयपुर के आसपास के गांवों में एक तरह से मिनी इजराइल बन गया, बड़े पैमाने पर संरक्षित खेती कर रहे हैं, कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले रहे हैं। ये सारा हमारे ये जो प्रशिक्षण आयोजित करते हैं इनका ही योगदान है।
1: रविवार शाम 7 बजे सुनिए ग्राम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
2: राजस्थान की धरती पर जहाँ इतिहास सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है, यही है अभानेरी। चरम बावड़ी की अद्भुत स्थापत्य कला, हर्षद मादा मंदिर की आस्था और गांव की संस्कृति में रचे बसे रंग जो इस बार बनेंगे एक खूबसूरत उत्सव का हिस्सा।
3: इस 12 और 13 अक्टूबर को अभानेरी फेस्टिवल में देखिए नुक्कड़ कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक संध्या का अनोखा अनुभव। तो इस बार विरासत और संस्कृति के रंगों से जुड़ने के लिए पधारिए अभानेरी दौसा।
2: परिवार के साथ आइए, राजस्थान की लोक कला और परंपराओं को करीब से जानिए। राजस्थान पर्यटन विभाग का सादर आमंत्रण। संपर्क करें पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर।
4: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
5: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
4: वो कैसे?
5: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
4: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
2: राजस्थान की धरती पर जहाँ इतिहास सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है, यही है अभानेरी। चरम बावड़ी की अद्भुत स्थापत्य कला, हर्षद मादा मंदिर की आस्था और गांव की संस्कृति में रचे बसे रंग जो इस बार बनेंगे एक खूबसूरत उत्सव का हिस्सा।
3: इस 12 और 13 अक्टूबर को अभानेरी फेस्टिवल में देखिए नुक्कड़ कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियाँ और सांस्कृतिक संध्या का अनोखा अनुभव। तो इस बार विरासत और संस्कृति के रंगों से जुड़ने के लिए पधारिए अभानेरी दौसा।
2: परिवार के साथ आइए, राजस्थान की लोक कला और परंपराओं को करीब से जानिए। राजस्थान पर्यटन विभाग का सादर आमंत्रण। संपर्क करें पर्यटक स्वागत केंद्र जयपुर।
6: बहुत ही छोटी जानकारी दिया कृषि में प्रशिक्षण को महत्व, डॉक्टर अतर सिंह मीणा जी। और देखो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो धन्यवाद स्वरूप एक सुनना चौको सो लोग गीत।
7: बिल्कुल सुना साहब।

सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आम एयर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं चांदनी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में यह गीत है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत शिव हरि का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनवाने जा रहे हैं दम लगा के हईशा फिल्म से। इस गीत को गाया है पैपॉन ने, गीत वरुण ग्रोवर ने लिखा है, संगीत अनु मलिक का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत दिल जंगली फिल्म से। इस गीत को गाया है तनिष्क बागची ने और शाकिब सलीम इनके साथ में आवाज दे रहे हैं अपनी। लिखा है तनिष्क बागची और अराफत ने, संगीत तनिष्क बागची का।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत बजरंगी भाईजान फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में एक गीत है। इस गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रियम का।

आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत कल हो ना हो फिल्म से सोनू निगम की आवाज में एक गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जावेद अख्तर का यह गीत लिखा हुआ है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम दोनों फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गीत है, साहिर का लिखा हुआ, संगीत जयदत्त का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बर्हम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू हुआ। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 92वां सीजन कल से शुरू होगा। कुल 38 टीमें ट्रॉफी के लिए करेंगी मुकाबला और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण वाराणसी में आयोजित होगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल होंगे इस कार्यक्रम में शामिल।

0: आज कार्यक्रम को शुरू किया जाए बाउल के मैदान से आई हुई एक खुशखबरी के साथ, जहां भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया के बर्हम में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। असम के 23 वर्षीय पुतुल ने पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के स्कॉटिश खिलाड़ी इयान मैकलिन के हाथों सीधे सेटों में 5-8, 4-8 से हार के बाद कांस्य पदक से समझौता किया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के हरिमैन जुआन को 4-4 कर बाहर हो गए थे। तो अपने तरीके का एक बेहद रोचक खेल, जहां पर कुछ बड़ी आकार की गेंदों के साथ हम निशाने साधते हैं मैदान की तरफ, तो वहां से भारत के लिए पदार्पण हुआ है इस ट्रॉफी में पदकों का। और अब बात निशानेबाजी की, जहां ISSF निशानेबाजी राइफल और पिस्टल विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू हो गया है। इस दौरान कई भारतीय निशानेबाज पदकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: निशानेबाजी की दुनिया में एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार है। प्रतियोगिता में 51 देशों के लगभग 385 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय टीम में कुल 35 निशानेबाज शामिल हैं। इनमें पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह के साथ एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत के युवा निशानेबाज जोनाथन गेविन एंथनी पर भी निगाहें रहेंगी, जो जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रतियोगिता में राइफल और पिस्टल की व्यक्तिगत तथा मिक्स्ड टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता अपनी लय और प्रदर्शन को परखने के साथ साथ साल के अंत में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल के लिए जगह बनाने का भी अहम अवसर है। 10 अक्टूबर को 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धाओं के साथ पदक मुकाबलों की शुरुआत होगी। मिस्ट टीम एयर पिस्टल में पलक गुलिया, मुस्कान उदयवीर सिद्धू और अजेंद्र सिंह चौहान भारतीय चुनौती पेश करेंगे। वहीं एयर राइफल मिक्स्ड टीम में आर्या बोर से ख्याति चौधरी, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा हिस्सा लेंगे। काहिरा विश्व कप में भारतीय दल के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने और पदक तालिका में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की चुनौती होगी। अब देखना होगा कि भारतीय निशानेबाज अपने सटीक निशाने और शानदार प्रदर्शन से देश के लिए कितने पदक जीत पाते हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स गैंग।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों पे नजरें होंगी कि किस तरह से पदक जीते जाएं और जो फाइनल ISSF विश्व कप होता है उसके लिए अपने स्पॉट को फिक्स किया जाए। और इस पूरे टूर्नामेंट पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, तो कब कब दर्शकों को इनके मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं?
2: जी शक्ति, कल से ही कई मुकाबले खेले जाएंगे, आज भी कुछ मुकाबले खेले गए। अगर हम 11 अक्टूबर कल की बात करें तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह और जोनाथन गेविन एंथनी सहित कई निशानेबाज निशाना साधते नजर आएंगे। वहीं अगर हम 12 अक्टूबर को देखें तो अर्जुन बाबूता, श्रीकांत धनुष और पार्थ मखीजा इसी स्पर्धा में मुकाबला करेंगे। और इसी दिन 12 अक्टूबर को ही महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान, दिव्या थडिगोल, सुबराजू

और चिंकी यादव से भारतीय दल को काफी उम्मीदें रहेंगी। और अगर आगे बढ़े 14 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक गुलिया और रिदम सांगवान सहित भारतीय निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे उस दिन भी शक्ति। और इसी दिन अगर हम 14 ही अक्टूबर की बात करें तो पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में विजयवीर सिद्धू और उदयवीर सिद्धू जैसे खिलाड़ी अपनी चुनौती

0: सहित भारतीय निशानेबाज मैदान में उतरेंगे। तो ये काफी अहम टूर्नामेंट भी है, इस साल के अंत में वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसके लिए इन खिलाड़ियों के पास अहम मौका होगा कि अपनी चुनौती पेश करें आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। और शक्ति ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ है उसमें भारतीय निशानेबाजों का मिला जुला प्रदर्शन रहा। एक तरफ जहां नीरू ढांडा ने जो एक नई प्रतिभा के तौर पर निकल के आई, उनको फ्लैग बेयरर भी रही थी, उन्होंने कई पदक देश को दिलाए, लेकिन मनु भाकर जैसे खिलाड़ी जिनसे कई पदक की उम्मीद थी वो चूक गई। तो इन खिलाड़ियों के पास भी मौका है कि आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व करें।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कई नए खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा कुछ वरिष्ठ और बड़े खिलाड़ियों के बीच में, और किस तरह से अपना स्टेज सेट करते हैं आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ये देखने वाली बात होगी। निशानेबाजी के बाद अब कार्यक्रम में रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। फिलहाल रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत से मिले 250 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 9 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए मैच के हीरो कप्तान शाई होप रहे, जिन्होंने 45 गेंद में 102 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली।
2: श्रेयस अय्यर की मैनसिन ब्लू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 249 रन बनाए। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली। सैमसन के अलावा तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर नाबाद 44, लोकल बॉय ईशान किशन ने 22 गेंद में 43 और कप्तान अय्यर ने 18 गेंद पर 40 रन की पारी खेली। मेहमान टीम के लिए रोस्टन चेज ने 3 और शमर स्प्रिंगर ने 2 विकेट लिए। 250 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवा बैठी। हालांकि इसके बाद कप्तान शाई होप ने एक छोर से तेज रफ्तार से रन बनाना शुरू किया और पहले रोमिन पॉवले के साथ 53 तथा शेरफेन रदरफोर्ड के साथ 120 रन की तेज साझेदारी करते हुए टीम को इस हाई स्कोरिंग मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 178 रन पर 4th विकेट गिरने के बाद कप्तान ने रोमारियो शेफर्ड के साथ 13 गेंदों पर 34 रन जोड़ते हुए मैच अपने नाम करके टीम को श्रृंखला में बराबरी पर ला दिया। भारत की ओर से मयंक ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का 3रा मुकाबला शाम 7 बजे से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रशांत, टी20 का जो सबसे सफल रनचेज है 259 रन का दक्षिण अफ्रीका ने इसी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ किया था, लेकिन कल का मुकाबला अगर देखा जाए जिस तरह भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा, यदि भारत वो 260 के आंकड़े को पार भी करती तो जीतना मुश्किल था। सबसे बड़ा रनचेज भी देखने को मिल सकता था और ये लगातार एक दिवसीय श्रृंखला में भी हुआ
3: जी।
1: और यहां पे भी वो सिलसिला जारी है कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी हमें जिताया हुआ मैच में पीछे कर दे रही है।
0: बिल्कुल शक्ति, अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो 9 गेंद शेष रहते ही वेस्टइंडीज ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया और टी20 में 250 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा होता। अमूमन हम देखा करते थे कि ओडीआईज में भी 250 रन विनिंग टोटल माना जाता था, लेकिन टी20 में 250 रन अपने ही घरेलू मैदान पर डिफेंड ना कर पाना यह दर्शाता है कहीं ना कहीं गेंदबाजी में लूपहोल। अगर कल के मुकाबले की भी बात की जाए तो जो मयंक यादव, उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए जो 12 की इकोनॉमी रेट से। अगर अर्शदीप सिंह, जो 100 से ज्यादा विकेट ले चुके भारत के मेन पेसर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने भी 4 ओवर में 45 रन दिए और 1 भी विकेट उनके हाथ नहीं लगा था। और अक्षर पटेल, जो अभी इंडिया के प्रोमिनेंट ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा के बाद, उन्होंने भी महज 3.3 गेंद पर 63 रन दिया था। और शक्ति यही नहीं, अगर हम एशियन गेम्स की भी बात करें, जो फाइनल मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान से, तो जब जब टीम परेशानी में नजर आ रही थी तब तब जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो एकमात्र हमारे पास है वो भारत को वापसी करा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है, जब से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है तब से भारत की जो गेंदबाजी है और वो गेंदबाजी क्रम है लगातार धराशायी हो रही है। कल के मुकाबले में भी कुलदीप यादव हो या शुभम दुबे हो, नबंधीर हो, सबने कहीं ना कहीं 12+ की इकोनॉमी रेट से प्रदर्शन किया है।
1: जी बिल्कुल, आपने बुमराह का जिक्र किया, बुमराह ने भारत की साथ बचाई किस तरह से, तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स आपके सामने खड़े हैं तो भारत को वाकई वापस कहीं ना कहीं अब अपने उन पुराने खिलाड़ियों की, जो शायद थोड़े से कह सकते हैं कि पेस बॉलिंग अटैक के अकॉर्डिंग उम्र दराज है, उनका रुख करने का समय आ रहा है, या फिर एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश होगी जहां पे एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स के बीच में संतुलन साधा जाए।
0: जी कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार का सिलेक्शन ये दर्शाता है कि भारतीय टीम ने बहुत ट्राई किया यंग गेंदबाजों को, लेकिन उनसे वो आउटकम

0: पा रहा है, जिसके कारण वो अनुभव के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मौका होगा मोहम्मद शमी के लिए, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने भुवनेश्वर कुमार को सेलेक्ट किया है T20 में, ये दर्शाता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में भी उन्हें चुनने की बात रखी जा रही है, और मोहम्मद शमी के लिए भी अच्छा मौका होगा टीम में वापसी करने का।
1: जी बिल्कुल, और इसी क्रम में कई और खिलाड़ियों को भी अपना जलवा बिखेरने का मौका मिलेगा। कल से जहां रणजी ट्रॉफी का 92वां सीजन शुरू होने जा रहा है, देश के इस सबसे बड़े घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें नजर आएंगी। पहले राउंड में कुछ बड़े भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिखेंगे जो बाद में न्यूजीलैंड के रेड बॉल दौरे के लिए इंडिया ए टीम में भी शामिल होंगे। प्रशांत
0: जी बिल्कुल, और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर जो डिफेंडिंग चैंपियन है अपने खिताब को बचा पाती है कि नहीं, क्योंकि इसका रिवॉर्ड भी मिलता है शक्ति। हम आकिब नबी की बात करें तो अभी टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ऐसे जगह से बहुत कम खिलाड़ी निकल के आते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते, उसमें से एक आकिब नबी थे। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया से हारने के बाद पारस डोगरा की कप्तानी वाली टीम श्रीनगर में मध्य प्रदेश के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी, और कहीं कहीं प्रोमिनेंट प्लेयर भी हैं जो इस सीजन में खेलते नजर आएंगे। अगर हम कर्नाटक की बात करें शक्ति, तो वहां से केएल राहुल जो टीम का हिस्सा, अभी शतक भी लगाया था उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में, यशस्वी जायसवाल जो है प्रोमिनेंट ओपनर है भारत के, रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए, हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज, राजस्थान के लिए मानव सुथार जो अब इंडिया के लिए भी खेलते टेस्ट मैचेस में, तमिलनाडु के लिए वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में।
1: जी बिल्कुल, और जब आपकी टीम में, आपकी प्लेइंग 11 में, आपके स्क्वाड में इस तरह के बड़े खिलाड़ी जुड़ते हैं तो ना सिर्फ टीम को मजबूती मिलती है, बल्कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको भी देख के काफी कुछ नया जानने को, सीखने को मिलता है कि आप जब एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। कुछ खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी नेशनल टीम में वापसी का दावा पेश करने का भी एक बड़ा मौका होगी, जैसे कि मुंबई के सरफराज खान और कर्नाटक के करुण नायर, मुंबई के आयुष मात्रे भी चाहेंगे कि इसी ट्रॉफी के जरिए भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दी जाए। पिछले सीजन में 37 विकेट हासिल करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी मैदान पर वापसी कर रहे हैं, बंगाल की टीम का हिस्सा है, तो आपने जैसा कहा भी एक अच्छा मौका है उनके लिए भी।
0: जी बिल्कुल, और चार सदस्यीय चयन समिति की नजरें विदर्भ के हर्ष दुबे, जिन्होंने आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रफुल्ल हिंगे, यश राठौर और उत्तर प्रदेश के लेग स्पिनर जिशान अंसारी पर भी होगी, उमेश यादव जो पंजाब के लिए खेलते हैं, हर्षल पटेल लगातार वो आईपीएल में आरसीबी के लिए और अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मनदीप सिंह, हनुमा विहारी जैसे अनुभवी खिलाड़ी अहम मेंटोर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। शक्ति
1: प्रशांत जल्दी जल्दी में हमें यह भी बता दीजिए कि इस बार ग्रुप का संतुलन और आंकड़े क्या कह रहे हैं।
0: ग्रुप ए की अगर बात करें शक्ति, तो उसमें बिहार, बड़ौदा, गोवा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और विदर्भ को शामिल किया गया है। ग्रुप बी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, त्रिपुरा, पंजाब और असम की टीमें शामिल हैं। वहीं ग्रुप सी में बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, सर्विसेज और उड़ीसा को शामिल किया गया। वहीं ग्रुप डी में मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रेलवे जैसी टीमें खेलती नजर आएंगे। शक्ति
1: और श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि एक प्लेट ग्रुप भी होता है, जो कि हमारी जो एलाइट टीमें होती हैं उनके बजाय ये छह टीमें जो नई होती हैं, फिर इनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन में थोड़ा सा कमतर रहता है, उनको शामिल किया जाता है। तो प्लेट ग्रुप में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की टीमें होंगी। और अब कार्यक्रम में अंत में रुक कर लेते हैं फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का, जिसका 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत विषय पर केंद्रित होकर के लोग साइकिल चलाएंगे और देंगे फिटनेस का संदेश। और इसी संदेश के साथ श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा

0: उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया।

0: कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पर आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
3: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
5: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
3: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news

0: newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: देश की सुरीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं

0: हम सुन रहे थे ये गीत सुहाना सफर फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे

0: कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए में ये गीत जो है फिल्म तेरे मेरे सपने से। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गोपाल दास नीरज के बोल हैं और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरे अपने फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

हम सुन रहे थे ये गीत कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और कार्यक्रम आपके लिए समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: खाते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या कथुत है मेरी, जरा बताओ तो।

रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादो।

0: पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा।

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

तारों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश है खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में गाये फिल्म ये रात फिर न आएगी के इस नगमे के साथ। बोल एसएच बिहारी के हैं और तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

अभी आपने महेंद्र कपूर को सुना फिल्म ये रात फिर ना आएगी में। अगला गीत सुनते हैं जिसे लिखा है गुलशन बाबरा ने, सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने, मिली जुली आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

यकीन जी हां श्रोताओं, अगला गीत हमने इसी फिल्म से चुना है जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। कलाम हसरत जयपुरी का है और मौसिकी शंकर जयकिशन की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश आशा भोसले और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में फिल्म वक्त से। नगमा निकार है साहिल लुधियानवी और मौसिकार रवि।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के

0: कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जंजीर से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

स्वीकार किया मैंने। जी हां श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत निर्देशन उषा खन्ना का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म सिलसिला से। कलाम जावेद अख्तर का है और मौसिकी शिव हरे की।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शरारत से।

अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की मिलीजुली आवाज में, जिसे हमने चुना है फिल्म शिकार से। नगमा निगार है हसरत जयपुरी और मौसीकार शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। आखिरी पेशकश किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म सत्ते पे सत्ता से।

किशोर कुमार, भूपिंदर सिंह और साथियों की मिलजुली आवाज में गाए फिल्म सत्य पे सत्ता के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM 101.3 MHz पर। इस वक्त रात के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय

0: राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर, जय हिंद।